सतगुरु ने कह दिता काना जी पी लो जी, ठीक है थोड़े बोल बड़े मधुर ने चंगे ने, पर थोड़े ने परमात्मा दे नहीं ने, थोड़े दिमाग चो निकले ने, थोड़ी सोचनी चो निकले ने, ये बोल तुसी परमात्मा दे सुन के नहीं सुनाए, सोच के समझ के तुकबंदी करके सुनाए ने। जिस ग्रंथ दी असी रचना पे करदे आ ये केवल परमात्मा दी बाणी वास्ते है, तुकबंदी करन वाले दिमागी कवियां वास्ते नहीं है। इस वास्ते पोथी परमेश्वर का स्थान, ये ते सारे बोल परमात्मा दे ने, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश परमात्मा दा प्रकाश है, और गुरु ग्रंथ साहब नु मत्था टेके होया परमात्मा नु मत्था टेके, अकाल पुरख नु मत्था टेके, ये ते पोथी परमेश्वर का स्थान। ते फिर इदे च कुछ होर ना समझना, ये ते रविदास दे बोलने ते कबीर दे बोलने, साडे विच कुछ कई इस तरह दे भी पैदा हो जाते हैं। संसार दा भरवण करदे होया पता नहीं कितनी तरह दी मैनू दुनिया मिलती है, पर एक नुकता मैं अर्ज करदे हां, खंडन करन नालों तर्क करन नालों सहमत होण वास्ते ते समझण वास्ते लखां गुणा ज्यादा अकल चाहिए। खंडन ते कोई भी कर सकदा, तर्क ते कोई भी कर सकदा, तर्क ते परमात्मा ते भी हो जांदी है, नास्तिक नहीं मनदे, अज भी नहीं मनदे। तर्क दा की है, तर्क ते सिद्धि परमात्मा ते भी हो सकदी है। एक अंधा भी कह सकदा कोई सूरज नहीं मैं नहीं मनदा, तर्क ते हो सकदी है, सूरज ते भी हो सकदी है, और अंधा जो कहेगा वो अपने तल ते सच है, सच्चाई बयान कर रहा है। बड़े ध्यान नाल सुनना, अंधे नूं झूठा नहीं साबित कर सकते असीं, वो कहिंदा नहीं है सूरज, नहीं है सूरज, मैं नहीं मनदा, और नहीं है, तो अंधे दे तल ते वो एक सच्चाई है, क्योंकि उदी दुनिया दे सूरज नहीं है। अगर नास्तिक कहिंदा है नहीं है परमात्मा, नहीं है परमात्मा, तो इतना ही कहना पेगा जे तेनू समझ नहीं है, परमात्मा ते है तेनू समझ नहीं है, सूरज ते है तेनू दिखाई नहीं देंदा, की करिए की करिए। इस तरह दे तार्किक लोगां नू मैं कह देंगा गुस्ताखी माफ, बार बार मैं माफी मांग लवां, अंधे ने कह देंदे ने सूरज नहीं है, ते मैं भी उन्हां नू कह देंदा तुसी ठीक कहिंदे हो, तुसी अपने तल ते ठीक हो, समुचे संसार दे तल ते तुसी गलत हो, अपने तल ते ठीक हो। तर्क करना की बच्चियां दा खेल है, जना खना तर्क कर देंदा, समझ कख भी नहीं आउंदी, तर्क कर देंदा, तर्क कोई भी कर सकदा। मैं एक दफा फिर अर्ज कर दें, अगर एक अंधा कह देंदा कोई सूरज नहीं मैं नहीं मनदा, कोई रोशनी भी आउंदी है, कोई चानना भी आउंदा, मैं नहीं मनदा, तुसी स्पष्ट करके दसो, प्रमाण दे के दसो, प्रत्यक्ष प्रमाण दे के दसो कि रोशनी होंदी है, सूरज होंदा है, तो हुण किहड़ा प्रमाण दोगे अंधे नूं, किहड़ा प्रमाण दोगे, किहड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण दोगे। वड्डे तो वड्डा नास्तिक भी उहदे सामने फेल हो जाएगा, गुस्ताखी मां, वड्डे तो वड्डा आस्तिक भी, वड्डे तो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी संत भी उहदे सामने फेल हो जाएगा, नहीं दे सकदा प्रत्यक्ष प्रमाण। इस वास्ते इन्हां अंधियां ने फिर ऐसे पुरशां नूं किधरे तत्ती तवी ते बिठाया है, बंद बंद कटे ने, सूली ते लटकाया है, कतल कीता है, असीं नहीं मनदे सूरज है, वो कहिंदे रहे सूरज ते है, सूरज ते है, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, चानना ते है। अंधे कहिंदे रहे नहीं है ते दिखाओ, प्रत्यक्ष प्रमाण दे, हुण की प्रत्यक्ष प्रमाण दे। हर उस तार्किक नूं जो कुतर्क करदा है, तर्क नहीं कुतर्क करदा है, समझ कछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ते तर्क कर देंदा है। इस मंजिल दा ओ राही भी नहीं है, ते तर्क कर देंदा है। उन्हां सारियां नूं मैं ए आखांगा, अगर कह रहे ने सूरज नहीं है तो बस असी मन लैंदे हां अंधे हो, और कुछ भी नहीं, अंधे हो। सुजाखा कदई नहीं आखेगा सूरज नहीं है, सूरज नहीं है। अज भी मैं अर्ज करा, आस्तिक लोगों नालों नास्तिकां दी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मंदिर मस्जिद कई सुन्ने हो गए ने, बौद्ध मठ कई सुन्ने हो गए ने,
ਚਰਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ

ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜੋ ਅਛੂਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਈ ਏ ਇਸ਼ਾਰਤਨ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਈ ਏ ਦਬੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਚ, ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਭ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧਾਤੁਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਮ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੇਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਲੋਭ ਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਭ ਤੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ, ਮੋਹ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਸਰੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਸਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਸਰੇਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਪੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਦਾ, ਛੁਪ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਈ ਏ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਹੋਈ ਏ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈਏ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਵਾਤਸਾਇਨ, ਕੋਕਾ ਪੰਡਿਤ ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਨੇ ਕਾਮ ਸੂਤਰ ਲਿਖੇ,
तो एक कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं ने, थोड़े ने। और हैरानगी दी गल ए है कि इन्हों महापुरुषों ने भी जो कुछ लिखे है काम कृत नूं किवें प्रगट करना है, इस कृत दा किवें प्रयोग करना है, यही लिखे। अगर कोई महापुरुष ए लिखे कि क्रोध किवें करना चाहिए, इन्हों किवें प्रगट करना है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये महापुरुष नहीं है। अगर कोई हंकार की व्याख्या इस ढंग नाल करे कि किवें हंकारी बनीदा है ते किवें हंकार नूं प्रदर्शित करीदा है और हंकार प्रगट करन दे ढंग दसे, उकसाण दे ढंग दसे, तो ये विचार ये लेखनी कोई धार्मिक लेखनी नहीं है। और इस संबंध विच कोई लिखे कि लोभी किवें बनीदा है और लोभ नूं किवें प्रगट करीदा है, तो ओ स्पष्ट होवेगी गल कि कोई लोभी लिख रहा है। इस वास्ते ऐसा जापदा है वातसायन ने या कोका पंडित ने, काम सूरत सूत्र जो लिखे है काम उभारण लई, काम प्रदर्शित करन लई, कामी किवें बनीदा है और काम नु किवें प्रदर्शित करीदा है, ये लिखे है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथां दी कोटी विच वातसायन दे काम सूत्र या कोका पंडित दे काम शास्त्र शास्त्र दर्जा नहीं प्राप्त कर सके। वो एक कामियां दी लेखनी बन के रह गए, कामियां दे पढ़न योग ही जो है रह गए। और अत्यंत वासना विच ग्रसे हुए मनुखां ने अपनी वासना नूं होर उजागर करन लई उन्हां नूं पढ़ना पढ़ाना शुरू कीता। यही कारण है कि धर्म दी दुनिया च और समाज दी दुनिया च यह ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय नूं गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोया है, अपने विचारां विच थां दित्ती है और इसका जिक्र भी कीता है। ये तो ठीक है कि जन्म की क्रिया काम आश्रित है, तो जब काम आश्रित है काम बंद हो जाए, काम रहे ही ना तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है, काम जीवन का केंद्र है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे ने अपने पावन शब्दों विच थां दित्ती है, तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया होया भोजन अमृत दी थां ते जहर बनता है, तंदुरुस्ती दी थां ते रोग पैदा करता है, इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है, तलांजली विच ले जाता है। और यही बार बार दे जन्म ते मरण का कारण बनता है। शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जूना दे पाण दा कारण बनता है, जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मा तक। आप साफ फरमान कर देने, हे काम नरक विश्राम बहु जौनी भरमावण है। इसकी मूल व्याख्या तो इंज बनती है, जब जन्म काम तो होया है तो काम की अंश जीवन दे होगी, लाजमी होगी।
जैसे मां बाप तो शरीर आया है तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बिन धारा, पातशाही भी फरमान करते ने, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पिता का मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। ए गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी इस दी सहयोग दे नाल ए मनुखी तन दा पुतला बनया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने जिसका नाम है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नू जोड़े है तो इस पुतले विच मिट्टी है पानी है वो वेग भी है। मां दा खून भी है पिता दा बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम दा वेग भी है जन्म तो ही। इस बिंद नू इस खून नू असी काया विचों कढ़ नहीं सकते, ते जिथे उस बिंद नू उस खून नू इस काया विचों नहीं कढ़ सकते तो काम नू भी नहीं कढ़ सकते, क्योंकि तिन्हां दे मिश्रण दे नाल ही ते काया दा ढांचा बनया है, ये पुतला बनया है। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। बड़ा सुंदर ये पुतला बनया। तो सतगुरु देव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे, इस उपदेश दे च है काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने भुख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भुख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तू दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर दी अधिक शक्ति है जो शरीर विच नहीं समा सकती, वो अधिक वेग प्रबल वासना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके, बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। आज दे समय दे काम चिंतन का हिस्सा बन गया, काम सोचनी का हिस्सा बन गया। शरीर दे ते है ये मन दे च भी हो गया, चिंतन दे च आ गया, सोचनी दे च आ गया, विचारां दे च आ गया। ता ही ते आज जितना साहित्य बाजार विच बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे ने, उस साहित्य विच काम ही काम है। साहित्यकारां दी कलम काम दे संबंध च लिख रही है। लाजमी साहित्यकार काम बारे सोच रहे ने, काम दा चिंतन कर रहे ने, काम दे विचार उन्हां दे अंदर चल रहे ने, काम सोचनी बन गई है। किसे वक्त शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस, है बिचारे के आजा पर औरत सवार। भावे उन्हें अपने देश की गल की थी, हिंद के शायर व सूरतगर अफसाना नवीस,
ہے بیچارے کے آزا پر عورت سوار. یہ جو ناولسٹ نے کہانی کار نے یہ جو سنت راش نے یہ جو شاعر نے دارشک نے وچارک نے انہاں دے وچاراں وچ انہاں دی لیکھنی وچ انہاں دی چترکاری وچ انہاں دی سنگت راشی وچ کام ہی کام چھایا ہے. مانو کام تو بنا اور کچھ ہے ہی نہیں. سارا ساہت کام آشرت ہو گیا ہے اور اسے ہی کہانیاں شاعری دے آدھار تے بنن والیاں فلماں کام دی پردرشت تصویر بن گئیاں. چاروں پاسے مانو کام ہی کام چھایا ہویا ہے. پوسٹر اشتہار فلماں میگزین شاعری سنتراشی تصویر سب کام دی نمائش بن کے رہ گئے. کام چنتن بن گیا, کام وچار بن گیا, کام سوچنی بن گیا, کام یاد بن گیا, کام رام بن گیا, کام پرماتما بن گیا. جدکہ چاہیدا تے ایسا سی کام نو رام بنا دے, لیکن کام ہی رام ہو گیا اور چاروں پاسے کام ہی منک دے دل دماغ تے چھا کے رہ گیا. کام ایک ایسا جذبہ اگر وچاراں چاہ جائے سوچنی چاہ جائے چنتن دے چاہ جائے تو کام گرسیا منک رام دا چنتن نہیں کر سکدا, نام دا سمرن نہیں کر سکدا. بھگت رویداس جی مہاراج فرمان کر دینے

हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे होया। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप दे समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने

और इस दौर देच, इस कामी युग देच हम कहियत कलयुग के कामी जो संतान पैदा हो रही है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं। पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा, पुत ते जिन भूत है ती भी जिन भूत है। कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं, लैला पैदा हो रही है। कोई कबीर, कोई रविदास, कोई भाई मनी सिंह, कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा हो रहे। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके, दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे, सहजे सहजे एजत शरीरक तल तो उच्चे उठन, उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे, दार्शनिक आणगे, विज्ञानक आणगे, संत आणगे। पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दल दल दे फसे रहे, तो औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया। जिन भूत जो अदृश्य रूप देच पहले कर्म करदे सन, दृश्यमान रूप देच ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूता नु काबू करना औखा सी, अजो की औलाद नु काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दिया कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नू मार रहे ने, तरह तरह दे कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं, संजम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप दा जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप दा जीवन राममई नहीं हो सकया, सिर्फ काममई होके रह गया। पातशाह कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अखाज। रन्ना होइयां बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना, यही उना दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे ची खपके रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण ले निकल दी है। रूप दी प्रदर्शनी, शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे, और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी का लक्ष्य होवे, तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा, अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी होवेगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है,
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਗਨ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਧਨਾੜਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਆਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੈਸ਼ ਨਾਵਲ, ਜਿਨਸੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੂਬ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁੱਖ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਾਨੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਪ ਸੁਖ ਪਵਿੱਤ ਚੰਚਲ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਚੰਚਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੁੱਛ, ਇਸੇ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਚਾਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।

इसते भय तो डर दे होया। गुरु दी संगत पकड़ी, प्रभु दी ओट पकड़ी, नारायण दा आसरा लिया। बस नारायण दा आसरा, गुरु दी संगत, यही ओट है, यही आधार है।

तान कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नू सत नू रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे उसे टिकया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उना दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वद्दा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों दी तपस्या नू जला के रख देंदी है कितने दिनों दी साधना कितने दिनों दा परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दियां ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब ये मर ही चुके है ते मेरे को ल्याण दा मतलब जद खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है हां मर गया ये ते ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नू वेखदा है अपनी स्याणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नू पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नू दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दुध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।

अमृत वाणी घटते उच्चरों आत्म को समझाओ। ये दस इंद्रिय में काबूज कर लेना है। पंज विषयां दा ते नामो निशान मिट गया है। वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां दा नामो निशान ही मिट गया है। ये ते रहे ही नहीं। सत्तर दो भरे अमृत सर बिख को मार कड़ा। शरीर विच आयुर्वेद की पद्धति के मुताबिक 72 मोटियां नाड़ा ने 72 जिन्हां विच खून वड्डे रूप विच गर्दिश करता है और उस तो छोटियां छोटियां तंतुआं ते नसां नूं मिलता है। लेकिन मूल रूप विच वड्डियां नाड़ा ए 72 ने। भगत जी कह रहे ने ए 72 नाड़ा इन्हां विच खून गर्दिश नहीं कर रहा, अमृत गर्दिश कर रहा। मेरा खून खून नहीं रहा, अमृत हो गया। और जब खून अमृत हो गया तो बोल अमृतमयी हो गए। अमृत बाणी घटते उचरों आत्म को समझाओ। जे खून अमृत हो गया तो दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, बोल अमृतमयी हो जाते हैं, रोम रोम दे चो अमृत दियां तिरंगा निकल दियां ने। इसनू शायरे मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बड़े आलमाना ढंग नाल इंज बयान कीता है। एक फूल घर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, इंद बूंद घर चाहे तो तूफान बन जाए। एक फूल घर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद घर चाहे तो तूफान बन जाए। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनवान बन जाए। एक बूंद खून दी, एक कतरा खून दा, जे किधरे उस दे सही ढंग दा उछाल आ गया है, समुची कौम दी तवारीख दा इतिहास दा सिरलेख बन जाता है, सिरमौर बन जाता है। खेड दे खून दी है। प्रभु चिंतन दे नाल जो पवित्र तिरंगा मन नूं अंदोलित कर दिया ने और मन दा यही वेग शरीर नूं प्रभावित करता है, खून प्रभावित होता है, पावन हो जाता है, खून पवित्र हो जाता है। खून कहावतां ते खून दे संबंध च कई ने, इसदा ते खून खून नहीं पानी हो गया, इसदा ते खून खून नहीं ठंडा हो गया, इस दे खून विच कोई गरमाश नहीं, इस दे खून विच कोई लाली नहीं पानी हो गया। एक कहावतां बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल। उम्र दे वधदियां अगर प्रेम वधे दया वधे तो समझना चाहिदा है जीवन लाभ दी तरफ जा रहा है, नफा हो रहा है। पर उम्र दे वधदियां अगर क्रोध वधदा जा रहा है, क्रोध वधदा जा रहा है तो जीवन घाटे जा रहा है, जिंदगी अजाई जा रही है। अक्सर ऐसा देखण विच आया है उम्र दे वधदियां क्रोध ही वधदा है। क्यों? रोज रोज नवियां नवियां ख्वाहिशां, नवियां इच्छां, हर नवा दिन

आमद। देखते सही जिथे मनुख तन दी बहार आई है उथे कलगीधर जैसा यार भी आया है, उथे धन गुरु गोविंद सिंह जैसा यार भी आया है। यार ते आया है, बहार आई है, कोई संगीत नहीं, कोई गीत नहीं। सियाने कहंदे ने फुल्लां दिते जित बुलबुलां चह चहांदियां ने, नगमे गांदियां ने, खिड़ उठदे ने फुल, चटक उठदे ने गुंचे, खिड़ उठदे ने फुल। आदकाल तों ए मनोत चली आई है कि संगीत दा फुल्लां ते बहुत प्रभाव है और संगीत करके फुल सोने खिलदे ने, वधिया खिड़दे ने, बहुत खिड़दे ने। तो भाई साहब कहंदे ने खबर देहंद बागुल केशा गुफतंद हमा। सारे फुल्लां नू खबर कर दो, दस दो, कोई वांझा ना रह जाए। सब दे कन्नी खबर कर दो, हर एक फुल नू दस दो। खबर देहंद बागुल हा केशा

आरों सुन ऐ मोराजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हृदय च अपना पैर रख देना, वो अपना बिगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोराजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़िया होगा, सालां बदी जो पड़िया होगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध विच सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध विच जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होगा, ये दार्शनिक होगा, ये फिलोसफर होगा, ये चातर होगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड दिच भुला के रख देंगा, एक छिन दिच भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक दिच इस तरह बयान करते हैं। हे कलमूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते। हे कलेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध, झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है, ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल दे चाहे क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे कलेश दा मूल, हे कल मूल करोधं कदंच करुणा न उपरजते।

हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नरतं करोत जथा मरकटे, तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ऐ क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासं अनेक

संसार लोभी हो गया। लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है। लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी तो पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है। तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया, पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जाती है, भाव लोभियां नाल भर जाती है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठते ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी, पापी ही पापी। सब कुछ बेचण लई तैयार ने और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्मस्थल, बाजार बन गए तीरथ, सनातन मत दा सिरमौर तीरथ बनारस। शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपेश्वर ने। तपेश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी विच लोभी आ गए, लोभी जिथे कट्ठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चलदियां ने लैण दियां, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा फैलांदा है। तदी ते मेरे पातशाह ने कहा, हे उभा लंपट संग सिर मोरे, अनकलेरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होता है, सब कुछ भ्रष्ट करके रख देता है। लोभी तीर्थां मंदिरां बाजार बना के रख देता है, और बाजार विच ते ठगी चलती है। बाजार ते ठगी दा चोली दामन दा जो है साथ है। ये लोभ इस दे कारण करके जीव पता नहीं कितनी थावां ते भरमदा है, भटकदा है, और उसका मन डोलदा है, और हर जगह नूं भ्रष्ट करदा है। हर वक्त लैण दी बिरती, लैण दी बिरती, लैण दी बिरती। लोभी दे नाल हर वक्त बाजार चलदा है, बाजार विच मनुख कुछ लैण लई जांदा है। लेकिन लोभी नूं ऐसा बाजार चाहिदा है, लेना ते सब कुछ है और सब दे कोलो लेना है, बदले दिच देना कुछ भी नहीं, ऐसा बाजार चाहिदा है। इस तरह दा बाजार लोभी हर वक्त अपनी कल्पना दी दुनिया दिच बनाई रखता है। लिहाजा लोभी दे नाल ही बाजार जांदा है। लोभी जिथे बैठा है उथे ही बाजार है, चाहे वह हरी मंदिर बैठा है, चाहे गुरुद्वारे बैठा है, चाहे खाने काबा देच बैठा है, चाहे चर्च देच बैठा है। लोभी तां बाजार देच बैठा है, वो किधरे मंदिर देच नहीं बैठा, वो किधरे गुरुद्वारे नहीं बैठा, किधरे चर्च ते मस्जिद देच नहीं बैठा। लोभी जिथे भी बैठा है बाजार देच बैठा है। लोभी जिधर चलता है बाजार नाल चलता है, लोभी जिधर चलता है ठगियां उसदे नाल ही जो है चलदियां ने। फिर सतगुरुदेव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इन फरमान करते हैं।

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र देवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें। तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें। तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नू भी धोखा देना है। नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है। लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नू बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है। ज्यों कूकर हर काया धावे दै दिस जाए, लोभी जंत न जानई भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, करंग दे च मुंह मारना, हड्डी दे जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, ਇਹ ਲੋਭੀ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਿਤਰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲ

करतार, हे करतार, धाणक हो गया। धाणक जो शमशान घाट विच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, भांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, साडियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिगरी मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है, कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त, जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त, सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं आवेगा, उदी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओ ही सर्व धाणक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख देता है, और खुद बैठा है धाणक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे। इस तरह हर मनुख धाणक बन गया, और हर मनुख ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता, दो कुतियां, मनुख जैसे सवेरे उठता है, इहदे नाल उठ बैठदियां ने,
भौंकदा है कुत्ता, भौंकदियां ने ये कुतियां। रात नू जद सौ जांदा है वक्ती तौर ते ये कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने, पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होता है, मजा ले दी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजा ले जपजी साहब पढ़े, ये मंदिर दी सुरत लवे गीता पढ़े, या ये नमाज पढ़े, ये कुरान दी तलावत करे, नहीं, मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आशा ते तृष्णा। थोड़ा जिया लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आशा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उसकी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आशा, ये दोवें इतनियां जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नू, उस लोभ नू नाल भौंकना पैंदा है, और पूरी उच्ची आवाज दे भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे, आशा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर दें, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दिए, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हमाता भरे जा मुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इते सुअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनोहत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किसी वक्त कहा कि मनुख दी आखिरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर की खोज है, विज्ञान की खोज, बाहर की खोज है, पर भारत का ऋषि मन की खोज दे संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन की खोज दे है। उन्हें देखिया मनुख का मन ते गऊ का मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखिया बंदर का शरीर ते मनुख का शरीर बड़ा मेल खाता है, भारत दे ऋषि ने देखिया गऊ दा मन ते मनुख दा मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे मनुख दी आखरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनी है। इस तरह मनुखी जिंदगी दी आखरी कड़ी गऊ हो सकती है, बकोले डार्विन बंदर हो सकती है।
افضل ہو گئی گو، مہان ہو گئی گو۔ بھارت دے چنتن دے دیش واسیاں دے چنتن دے، کیونکہ منکھ دی طرح سوچ دیے، منکھ دی طرح ممتا رکھ دیے، منکھ دی طرح دکھ سکھ محسوس کر دیے۔ اس نو مارنا ایسا ہے جیسے منکھ نو مارنا، اور اس دا ماس کھانا ایسا ہے جیسے بندے دا ماس کھانا۔ ترگت جون ہے، سور بشٹا کھاندا ہے، گندگی کھاندا ہے۔ تو اسلام دیوانی محمد صاحب نے حرام قرار دیتا نہیں کھانا، یہ سور نہیں کھانا۔ کہ دن بھر بشٹا کھاندا ہے، گندگی کھاندا ہے، اور پھر اس دی گردن دی ہڈی اتنی مضبوط اتنی سخت، یہ حلال نہیں ہو سکتا، جبا نہیں ہو سکتا۔ بہت تڑپے گا، بہت تڑپے گا، کھانا حرام۔ پر مہاراج کہہ رہے ہیں کھا رہے ہیں وہ سور، اگر وہ مسلمان ہے کھا رہے ہیں وہ سور، اگر وہ بیگانہ حق کھا رہے ہیں، اگر بھارت دا واسی ہے ہندو بودھ جین سکھ ہے، پرایا حق کھا رہے ہیں، گو کھا رہے ہیں۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے واک، حق پرایا نان کا اس سور اس گائے، گر پیر ہم تاں بھرے جامردار نہ کھائے۔ پر جب لوب کتا بھونکدا ہے، آسا تے ترشنا دو کتیاں بھونکدیاں نے، اس بھونکن وچ منک ایسا نڈھال ہوندا ہے، بے حال ہوندا ہے، کوڑ چھرا مٹھا مرداں، بھلکے بھونکے صدا بیا، یہ آسا ترشنا بھونک دیاں نے، بے حال کر دیندیاں نے۔ یہ لوب کتا بھونکدا ہے، نڈھال کر کے رکھ دیندا ہے، ایک سوان دوئے سوانی نال پلکے بھونکے صدا بیال، کوڑ چھرا مٹھا مردار تانک روپ رہا کردار۔ پھر یہ بے حال ہویا منک جھوٹ بول کے پرائے حق نو اپنا ثابت کرن دی کوشش کردا ہے، میرا ہے میرا ہے، جھوٹ بولدا ہے جد اس دا نہیں ہے۔ یہ زمین میری ہے جدکہ اس دی نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے جدکہ اس دا نہیں ہے، یہ دھن میرا ہے، یہ سمپدا میری ہے، یہ ملکیت میری ہے۔ اس طرح دوجیاں دا کھوندا ہے، دوجیاں دی چیز دیتے وستو دیتے اپنی مور لاندا ہے، بے حال ہویا تے بے حال کیتا ہے، لوب نے بے حال کیتا ہے، آسا تے ترشنا نے۔ اس واسطے میرے پادشاہ کہندے نے لوبھی دا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ لوبھی پاپی ہوندا ہے، لوبھی تو ہر وقت خطرہ ہے، دھن نو سمپدا نو زمین جائیداد نو۔ اور چونکہ ویاپک پدر تے لوگ پردھان ہو گئے، خلقت لوبھی ہو گئی ہے، تو ایک دوجے تو خطرے ود گئے نے، چھینا جھپٹیاں ود گئی نے، لوگ پردھان۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے تے بڑا سندر آسا دیوار دے بھی فرمان کیتا ہے، جیسے راجنیتک دنیا کرانتیاں آدیاں نے، راج پاٹھ تے بدل دیا، نیتیاں بدل دیا نے، ودھان بدل دے نے، کئی دفعہ کرنسی بدل دی ہے، دھن دا پرچلن بدلتا ہے، روپ رنگ بدلتا ہے، باہر دا اے پلٹا راج پلٹے نال ہوندا ہے، لیکن منک تے انتش کرن دی دنیا ہے، من دی دنیا، اس دے اتے اگر اہنکار راج کرے
तो नीति विच व्यवहार विच जुलम बर्बाद हो जाता है। अहंकार का मतलब मैं हां तू नहीं है, अहं। अहंकारी किसी भी बराबरी नहीं देगा, अहंकारी हर एक नूं पैरां दे थले रखेगा। तो जो पैरां दे थले आण नूं राजी नहीं, उसकी गर्दन कुचली जाएगी, लिताड़ी जाएगी, आखिर पैरां दे थले लियांदी जाएगी। और जब बहुगिणती विच मनुखता अहंकारी हो जाए, जोरावर हो जाए, तो कमजोर दा सिर शक्तिशाली दे पैरां दे थले हुंदा है, अहंकारी दे पैरां दे थले हुंदा है। चारों पासे जुलम छा जांदा है। ऐसे दौर कई दफा लंघे ने जद सदा हंकारियां कोल ते हंकारी दा पैर गरीबां मजलूमां कमजोरां दे सिर ते उड़ाइयां गईयां गर्दना, लिताड़ियां गईयां गर्दना। जद मन दी सेजा दुते काम दा राज होवे, वासना दा राज होवे, और बहुगिणती विच मनुखता इस तरह दी हो जाए, तो दुराचार आम हो जांदा है, सरे आम हो जांदा है। किसे मुल्क विच अहंकार प्रधान होवेगा, जुलम ही जुलम होवेगा। किसे मुल्क विच वासना एकाम प्रधान होवेगा, तो दुराचार आम होवेगा सड़कां ते, और सरेआम बाग बगीचियां। किसे वक्त भारत विच काम प्रधान मनुखता हो गई सी, रहिंदे ते पंजे विषय मनुख दे कोल हर वक्त ने, पर एक हर वक्त प्रधान होंदा है, वो कोई भी हो सकता है। अहंकार हो सकता है, लोभ हो सकता है, काम हो सकता है। और जब काम प्रधान मनुखता हो जाती है, तो बाजारां च दुराचार और दुराचार दे बाजार, परिवार विच दुराचार, उत्थे भी कोई शर्म हया नहीं रह जाएगी। और धार्मिक मंदरां विच दुराचार, जिस दौर विच काम प्रधान हो गया सी भारत विच, उसे दौर विच कोणारक दे मंदर बने, खजुराहे दे मंदर बने, और इस तरह दे होर मंदर बने। ये सारे मंदर राम दे मंदर नहीं, काम दे मंदर ने। वासना दियां नगन मूर्तियां और वासना दे कृत रूप पत्थरां दियां गढ़ियां हुईयां मूर्तियां देखण लई देश विदेश तो दुनिया पहुंच दिए कोणारक खजुराहा। बहुत वड्डी भीड़। ए वासना उस समय प्रदर्शित हुई सी, सरेआम हुई सी, नुमाइशी बन गई सी बाजार विच। बाजार ते की धर्म मंदरां विच, मंदर ही काम दे बने। और वाकई जद वासना ही प्रधान होवे, तो फिर हर पासे दुराचार छा जाएगा, वो काबले कबूल हो जाएगा, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। और ऐसी ऐसी क्रीड़ा होंदी रही इन्हां धार्मिक मंदरां विच, जिन्हों अल्फाजां विच अज दे समय बयान करना औखा है, जिन्हों सुनना सुनाना भी कठिन है। पर जे किधरे लोभ प्रधान होवे, बहुगिणती दे चोवे, ताकत दे चोवे, तो पाप व्यापक हो जांदा है, छा जांदा है। पाप चारों पासे, बकौले गुरु नानक अज दे दौर विच मनुखी मन दे राज कर रहा है लोभ। लबे पाप दोए राजा मैता, कूड़ हुआ सिकदार, काम नेब सद पुछिए, बह बह करे विचार। लब राजा है, लोभ
ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਲੋਭ ਤਹਾਂ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਲੋਭ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ, ਝੂਠ ਕੂੜ, ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੂਠ, ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਝੂਠੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੋਲ, ਔਰ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲ। ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮਨ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਾ ਦੋ ਦੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਨੁਮਾਇਸ਼, ਝੂਠ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਝੂਠ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਜਦ ਕਦੀ ਲੋਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੂੜ ਚੌਧਰੀ ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਦ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਸ ਨਾਇਬ ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੋਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਕੂੜ ਨਾਲ, ਕਾਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਕਾਮ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੀ ਰਈਅਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਭ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਭੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਰਨ ਕਰੋਤ ਅਖਾਦੰ ਖਾਦੰ ਅਸਾਜੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ। ਲੋਭੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਭੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਮਲੀਨ ਹੈ।

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूरमे, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुख चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट देच पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मण ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च ले लिया, तू अपनी पकड़ च ले लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नूं भी सीने नाल लाई फिरदी है। सियाणे कहिंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां दा ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पै, तां वी बंदरी बच्चे नूं छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा को खरी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आता, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारिया का मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक की अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

0: ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋਧ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहने लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत हो गए, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आखिया, खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनों भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नूं भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदियां वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा लिया होया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा लियाई है, इसकी गोद विच है। खादमा तू लियाई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां, जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़ियां दे चिलिपटे आया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद देच है। हैरान होके अकबर कहता है, ए बच्चा किसना बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनू ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने फिक कर है। कहते ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया, मैं मोह दी नजर नाल सलीम नूं वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नूं वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नूं अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी, आलम फाजला नूं अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आं, मनुख नूं अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनूं चंगे नहीं लगदे। अपना करोप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करोप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई कोई मनुख प्रभुदी शरण प्रकट प्रभु का चिंतन कर नाम दे गीत गांदिया गांदिया मऊ दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जाता है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मऊ ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी दे सारे का सारा पराया इतना वड्डा जगत ते ओपरा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा डर विच जीवेगा दुख विच जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साढ़े देश देच एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखिया सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चल रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जब ये नाम सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसिया है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आखिया जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख दी पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड़ एक शाखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड़ एक शाखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दे देश जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
1: और
0: संस्कारा वे प्रारब्ध वसो के संजोग वसो के इना परिवारां दियां टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मन दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये भी रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उनू तो वेखिए गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की दंडौत की, राजे ने सन्मान दिता बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख बहुत संताप बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

फले पुत्र दी मड़ी लाश मेरे कोल है। शेर ने हमला करके उसनु जख्मी कीता है, मार दिता है, उदी लाश मेरे कोल पई है। बस यही संदेशा देने वास्ते मैं थोड़े कोल आया, थानू दसन लई आया। राजा निर्मल प्रसन्न चित होके प्रसन्न मुद्रा विच हसदिया होया कहिंदा है, तपिया तप क्यों छाड़ियो,

0: 하루 하루 하래.
1: 뭐는 급이냐? 뭐네 아들이 뭘 검소리냐 대처? 바로 뭘 검소리? 아흥가시 아흥 매하 매하 매하 진내 지르덕 이 매랜디에 ये अहम भाव रहता है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है, चलता रहता है। ये जन्म ते मरण दा मूल है, ये जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, हमें एहा जात है। हमें कर्म कमाए हमें ए ही बंदना फिर जौनी पाए। हमें दा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशत, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनैतिक ने, अहं मूल है, अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में। और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण, इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है, बहुत लंबे गेट दे च पा जांदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण दा मूल है। वक वक जीवां देच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है, और पतंगे विच दृष्टि रोग, मच्छी देच रसना दा रोग, और इसे तरीके नाल भौरे देच नासका दा रोग। होमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने, ए रोग दुख दा कारण बनदे ने, और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थां दा अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उस दा अहंकार, किधरे इस जीवन दा अहंकार, किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप देच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इस दे आधार ते खड़ा होंदा है। जोवन धन प्रभ ताकै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल दी तरह घूम रहा है। जोबन दी मस्ती विच, धन दी मस्ती विच और सता दी मस्ती विच। धन जेब दे चोवे या मन दी सोचनी दे चोवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन दे चोवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देंदा है। जोबन पागल पंदी सीमा तक ले जांदा है, पर जोबन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब दे च है, धन घर दे च है या धन सोचां दे च है, विचारां दे च है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तदि पातशाह फरमान कर रहे ने, जोबन धन प्रभता कै मद में, अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है, दूसरे नू तुच्छ समझदा है। आपस को दी रग कर माने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल देच खुर्शीद, ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद, अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीदम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल देच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हां, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनू एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल देच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता दे खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होंदा है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं,
0: हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभै ननासी कह रविदास सभै नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे।
1: इति सारे भूल के पागल होए फिर देने, कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत लई फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान, हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवै नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि औगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। इह गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंत, इक ना नाद ना वेद। एक अद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जान, इक ना सुरत न सिद्ध अक्कल सिर, अक्षर का भयो न लहन, अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंत, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप देच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल दा पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगां दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू हड्डियां दा माण, जोबन जवानी दा माण, हड्डियां दा माण, मांस दा माण, मिंज दा माण और खलड़ी दा माण। इस तो इलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया दा अहंकार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर पहुप सुगंधा परस मानक देहं मलीनं मजारुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसियां फुलना जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां हो जांदियां ने। मजार उदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंज मांस खलड़ी अज्ञानी एवें तन दा अहंकार करदा है, जो बंदा अहंकार करदा है। फिर धन दा अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होंदा है। और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है, ये दिमाग उस दी देन है, और ये तन ते मन दे आसरे ते तो धन कठा कर लिया, तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन दा अहंकार सता प्रभता, इसदा अहंकार अगा चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिदा है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई ना है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के ये प्रसन्न बड़ा होंदा है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है, वो मान इस दे अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने दे चाया है धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है। हुण त्याग दा अहंकार सता कोल है, सता दा अहंकार सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलता है, पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार। अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है, और अहंकार तो बचना औखा। जिड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण ले बनाने हां, अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा है। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता, ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इसते भी अहंकार खड़ा हो गया।

तपते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जांदी है। हे जनम मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजन्त सतरं दृणन्त अनेक माया विस्थिरने। एह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने दी तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा है, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जित सारा माहौल ही ऐसा होवे और हां कहण दी सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़दा भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होवे उतना ही जबान ते आ जांदा है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाल ही वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हां कहना ही भुल गए। हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दित्ती है, जायज मंग भी

पर छुरी कसा बने। कसाई दे छुरे हेठ आ गया, उन्हें जबा कर दिता, सिर वट दिता। गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई तांते फिकते

के लिए जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा बस उस नाली रुई पिंजी जांदी है।

ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उस दे हालात ऐसे बन जाते ने जैसे भयानक जंगल उद्यान देच कोई रमण कर रहा हुए, भ्रमण कर रहा हुए, क्योंकि अहंकारी दे गूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते ने और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान देच भयानक जंगल देच मनुख तनहा रह गया हुए। असाध रोग है, किसे वैद को इसकी दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति देच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर देने, वैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराधनानक हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन परमात्मा, केड़ी दवाई है उसदे कोल, बस परमात्मा दा नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बारों नहीं लानी, किधरों बारों नहीं लबनी, ये दवाई भी अंदर पई है। इस तरह जैसे के अहंकार रोग अंदर पे है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी इसे मां है। पर इसका यह मतलब नहीं दारू नहीं है, अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे है, हुण जे किधरे अंदरों निकले तू इते औषधि हो गई। मैं इते रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोवें मनुख दे अंदर ने, इसकी मर्जी है रोग नू वधाना है कि औषधि नाल इस रोग नू घटाना है ते मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा, मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी जात, मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तू है कुछ भी नहीं मेरा, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। इधर तेरा तेरा है, ये भी अंदरों निकलेगा। और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवाई भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ये फरमान ये वाक प्रेरणा दे रहा है, जे रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि दा सेवन कर।

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जो न साके सच का पंथा थाटेओ। सतगुरु दी बाणी दा फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साडे ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोहो न साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे च है, मनुख समय दे बंधन दे च है, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे है। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और इस सब कुछ मनुख काल दे जाल दे च फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे च है। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आंदा है। रात अपनी जाल लेके आंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दिया जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइया ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मोड़े कवन गुने। ऐ मूरख किमें छुटेंगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पे जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नु तड़प रहा है, रात नु तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन नहीं बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नू एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उदे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दियां तीन धारावां मनियां ने, समय नूं तीन हिस्सियां विच वंडिया है, भूत, भविष्य, वर्तमान, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दियां इन्हां ही तिन्नां धारावां विच। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड विच, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बने, पानी बनया, ठोस जीवन बनया, वनस्पति, पशु, पक्षी, सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलया, जिसनु मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु, हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छां, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख सदीवी विश्राम, ओ ते मंजिल ते लबना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नु बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दिया इच्छावां, मनुख दिया वासनावां, मनुख दिया कामनावां नु नापिए तोलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनिया ख्वाहिशा, ये इस छोटी जी जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावा सीमित नहीं है, वासनावा सीमित नहीं है, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नो समा चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनु कहंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापिए। असीम है,
भूतकाल, असीम है भविष्य। और मनुख इन्हां दोहां विच जीवदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ है उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां ने। जो समा आण वाला है उहदी चिंता मैनू जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है। इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान विच जो टिक गया उसे नू योगी कहंदे आ, उसे नू असी संत कहंदे आ, उसे नू असी भगत कहंदे आ, उसे नू ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नू नापदे ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम। इह एक दम जो मूंह दे च है नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंघ गए, उते वर्त लै, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं। नकद ते है ओही दम जो मूंह दे च है। यकदम बहे शरान बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगां चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखे शरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगां गुजस्त। एक दम जो नकद से इन्हों मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मन दिच सी वर्तमान नकद, इन्हों मैं बतीत कीता आन वाले दमा दी चिंता च। तो इस तरह यादा भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं। वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सैकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे हाजर हजूर खुदा है, उस दम दे ची अपने आप नू रोक लवे। वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए।
حاضر حضور خدا ہے. اسے نوئی مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم کونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵਨਹਾਰ ਸੋਈ ਪਰਵਾਣਾ. ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਔਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ. ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ. ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਨੇ, ਰੋਣੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਹੈ, ਮਰਨ ਹੈ, ਨਫਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ. ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਆਪਣ ਹੈ, ਕਰੋਪਤਾ ਹੈ. ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਟਿਕਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਮਿਟ ਗਏ, ਦੋ ਮਿਟ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ. ਬਹੁਤੇ ਦਮ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਹੋਣਗੇ. ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਸੰਤਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਭਵਿਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਫਾੜ ਹੋਇਆ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਔਰ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿਸ਼, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਦਿਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਭਵਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਜਾਲ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਈ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਨਿਤ ਫਾਸੇ, ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੇ. ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ?
तो सतगुर की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा थाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे छे, सच ते एक सैकंड दे छे, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंघ गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहिंदे ने, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया है। समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया है। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमां दा थे मरदाने नू भरोसा है, इतने दम ते मैं ले सकदा। बाले नू पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदे पातशाह, मरदाने नू 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं तो एको ही कदम दे भरोसे जी रहा। एक कदम जो पुटे पता नहीं दूसरा कदम पुट सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा, समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नो, पातशाह थानू किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदमी मोहलत मौत न जाना। एकदम जो मोह दे च है बस इसे ते यकीन है, इन्ना एक भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दिस डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दिस टिक गया, मन मिट गया, विचार खो गए, उथे एक नु प्रगट होने लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नु प्रगट होने लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है, और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहिंदे ने सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक,
विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिवजी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे, अजे समा मिठिया नहीं, अजे काल मिठिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखिया अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनूं मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नू मिला ते अजे ही मिला। इसनू मैं उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उनू कहने ने ते बेहाल है। इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा, मुस्तकबिल दी फिक्र दे जी रहा, इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहा, इते माजी दियां यादां दे जी रहा। ये वर्तमान विच नहीं, ये हाल विच नहीं, और जो हाल विच नहीं परेशान विच कहंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस

स्वप्न देत मनो कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था विच मनुख करे। स्वप्न विच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनदी है जो जागृत दे। स्वप्न विच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनदी है जो जागृत अवस्था विच। पर स्वप्न विच मिलाप होया है, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आउंदी है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वप्न इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है। पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहने नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वप्न अवस्था विच नहीं हो जाता है। और स्वप्न अवस्था विच जो संसार है वो जागृत अवस्था विच नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वो स्वप्न अवस्था विच विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था विच संसार है वो जागृत विच खत्म हो जाता है। तो हुण किस नूं सत कहिए ते किस नूं मित कहिए, किस नूं कहिए है ते किस नूं कहिए नहीं है। तो धार्मिक विद्वान कहंदे ने दोवें रूप देने पैने ने, है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, है स्वप्न जितनी देर लई चल रहा है, मिट गया स्वप्न, सुपने दा संसार मिट गया, है जागृत और जागृत दा संसार। पर जैसे जागृत अवस्था खत्म हुई, निंद्रा अवस्था शुरू हुई, स्वप्न अवस्था शुरू हुई, तो जागृत अवस्था दा संसार नहीं हो गया। इते जीवन भर ऐसा चलता है, जो जागृत अवस्था विच है स्वप्न अवस्था विच नहीं है, जो स्वप्न अवस्था विच है वो जागृत अवस्था विच नहीं है। बिछड़ जांदे हां असीं उस तों जिस नाल जागृत अवस्था दे जुड़े हुए होंदे हां, और बिछड़ जांदे हां असीं उस तों जिस नाल असीं स्वप्न अवस्था विच जुड़े होंदे हां। जीवन भर ऐसा चलता है, रोज बिछड़दे हां, रोज मिलदे हां, रोज मिलदे हां, रोज बिछड़दे हां। इस तरह असी जागृत अवस्था विच एक संसार विच जींदे हां, स्वप्न अवस्था विच दूसरे संसार विच जीवदे हां। पर चूंकि जीवदे हां तो है शायद नहीं है, नहीं है शायद है, उतने तक ते है जितने तक जागृत चल रही है, जितने तक स्वप्न अवस्था चल रही है। इसे वास्ते थे बयान कीता है महापुरुषा ने, शायद जगत स्वप्न है, जागृत भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है, लेकिन थोड़े जिया भेद न इस नूंज बयान करिए, जो रात दा स्वप्न है शायद ओ जागृत अवस्था दी कल्पना है,

ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨਵਾ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭਦੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਕਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਂਵਾਕ, ਇਹ ਮਹਾਂਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਤੋਂ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੁਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਰਮ ਮਨੁੱਖ, ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਅਗਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਝੂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਸਿਹਰੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਧੁਨੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਪਕਵਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਗੰਧਿਤ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਮਗੀਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮੇ ਖਿਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮੇ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਦੋਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈਸੇ ਅਸਹਿ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ
पवित्र माहौल। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ऐसा होवे कि पवित्र थां कोई लभे ही ना, ते चारों पासे ही अपवित्रता होवे। ऐसे दौर दे मनुख अपने मन नूं किस तरह बचावे? इकबाल ने भी कह दिता है, दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाज नी गोयन के दामन तरमकुन होशियार बास। तू लक्कड़ दे तख्ते नाल मैनू रस्सियां नाल बन दिता और दरिया दे सुट दिता। उपरों कह रहे हैं डुबना भिजी ना गिला ना हो, तो मैं किस तरह बचावा, अपने आप नू किस तरह बचावा? ये जो माहौल है, ये जो युग है, ये जो बाहर दी हालत है, इसनू साडे देश दे ऋषि मुनिया ने नाम दिता है कल युग। ते कल युग नू गुरु नानक कहंदे ने कलाली। ते कलाली तो मुराद आउंदा है शराब बना के बेचण वाला, जो स्वयं बनांदा है बेचदा है कलाल। पुराना शब्द साडे देश दे शराब बना के वेचण वालियां नूं कलाल कहिंदा है, कलाल। महाराज कहिंदे ने ए युग कलाल है, ए युग ही कलाल है, ए कल युग ही कलाल है। अगर ए कलाल है तो फिर ए केड़ी शराब बनांदा है और केड़ी शराब बेचदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो शब्द उच्चारण किया है इसका सिरलेख इंज है, सलोक मर्दाना महला पहला। महले पहले तो मुराद है गुरु नानक देव जी महाराज का यह वाक है, पहले पातशाह का है। सलोक मर्दाना पर यह शब्द मर्दाने के प्रति उच्चारण किया है, जो गुरु नानक देव जी महाराज का साथी सी, देखण नूं ते विचारीए सेवक से शिष्य से, पर गुरु नानक भाई साहब करके बुलांदे सन, भाई मर्दाना। भरा दा रिश्ता बड़ा गूढ़ा रिश्ता हुंदा है, और जो गुरु दा भरा है, गुरु नानक दा भरा है, भाईचारा बन गया गुरु नाल, इत बहुत वड्डी पदवी प्राप्त हो गई। तो सिख जगत दे भाई साहब एक धार्मिक पदवी है, गुरु नाल भाईचारा हो गया। हुण भाईचारा गुरु नानक नाल है, हुण भाईचारा गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल है, हुण भाईचारा गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल है। इस भाईचारे नूं बड़े सन्मान नाल सिख जगत दे आदकाल तो देखिया जा रहा है, और अज भी असी चोटी दे धार्मिक मनुख नूं भाई साहब करके बुलांदे हां। मरदाने नूं सतगुरु भाई साहब करके बुलांदे ने। जद भाईचारा है, इतनी नेड़ता है, तो नेड़ता दे कोई राज नहीं आउंदे। कहिंदे ने मनुख उत्थे छुपा के रखना चाहुंदा है, चादर पर्दा पाना चाहुंदा है, जिथे कुछ ओपरापण है। छुपाना ही इस गल दा सबूत है, जो कुछ भी सामने है सब बेगाना है, सब ओपरा है। हर मनुख अपने अपने पर्दे चुके फिरदा है, और हर मनुख बुरके दे च है। किधरे किधरे ये अपना बुरका उतारदा है, जब देखदा है अपना है, ये अपना घर है, ये अपने ने, इन्हां नूं मेरी असलियत दा पता है और मेरे नंगेज दा भी पता है, की ढकना इत्थे की ढकना। लेकिन आम बेगानियां तों मनुख नूं पर्दा करना पैंदा, पर्दा इस गल दा सबूत है, बुरका इस गल दा सबूत है, कोई सामने ओपरा है, बेगाना है। भैण भरा दे सामने बुरका नहीं करदी, मां पुत दे सामने बुरका नहीं करदी, अपना है, ये ते अपना है। अगर मनुख कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका छुपाना ही इस गल का सबूत है, सामने ओपरा है,
सामने कोई बेगाना है। अपने दे सामने ते मनुख सब कुछ उघाड़ के रख देंदा है। उदा जी करदा है अपना सीना भी चीर के एदे अगों रख दे। लेकिन बेगाने दे प्रति ते बड़ा सावधान आउंदा है किधरे इस दिया नजरां मेरे सीने तक ना पहुंचन, ये किधरे मेरे अंदर झात ना मारे। तो जिथे भाईचारा बन जाए उथे सब कुछ खोल के रख दिता जांदा है, और जिथे पर्दा पाना पए दो गल्लां हो सकदियां ने, या ते सामने सारे बेगाने ने ओपरे ने, और जिस ते पर्दा पाया जा रहा है कोई चंगा भी नहीं होवेगा। हमेशा जख्मां ते पट्टी बनन दी लोड़ पैंदी है, हमेशा शरीर दा दागी थां छुपाना पैंदा है, हमेशा शरीर दे अपंग हिस्से नूं ही ढकना पैंदा है, छुपाना पैंदा है, दूसरे तों लुकाना पैंदा है। जो कुछ भी लुकाना चाहते हैं छुपाना चाहते हैं, इतनी गलती स्पष्ट है ठीक नहीं होवेगा। गंदगी नूं ढकण दी लोड़ है, बिष्टा नूं ढकण दी लोड़ है, फुल्लां दे उत्ते चादर पाण दी कोई लोड़ नहीं। नग्नता निर्दोषता दा सबूत है, निर्दोष है, नगन है, नगन है, निर्दोष है, गुनाहगार है, ढकिया होया है, और ढकिया होना इस गल दा सबूत है गुनाहगार है। गुनाह नूं ढकना पैंदा है। एक मासूम बच्चे दा जन्म होया है, नंगा है, पर इस दी नगनता दे नंगेजपणा नहीं है। इसका नंगा शरीर लोभ की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर वासना की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, इसका नंगा शरीर काम की प्रदर्शनी नहीं कर रहा, जबकि कई ढके हुए शरीर भी प्रदर्शनी करते हैं। गंदगी ते चादर पाई है, चादर दे चों भी बदबू बाहर आ गई है, चादर दे चों भी गंद बाहर आ गई है। तो यह दौर, यह समा, इसनों गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कलाल, और यह शब्द उच्चारण कर रहे ने मरदाने दे प्रति। मरदाने दे सामने इस युग की नगनता सतगुर पेश कर रहे ने, हालांकि युग ने अपने आप नूं ढकया है, बहुत ढकया है, बड़ा ढकया है। एक जमाना ते ऐसा भी साडे देश दे लंघया है कि असी धार्मिक पुरुषां दीआं मूर्तियां भी नगन बनाईआं, धार्मिक मंदरां दे च भी नगन मूर्तियां बनाईआं, और बड़े बड़े साधुआं दे टोले भी चले नांगे साधु, नंगे साधु। साधु होण दी पहचान नंगा है, इहदे कोल ढकण वास्ते कुछ भी नहीं, ढकण वास्ते कुछ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि इहदे कोल कपड़े नहीं ने, नहीं, ऐसी कोई गंदगी इसके कोल नहीं जिसनूं इह ढके। फुल नंगे ही ठीक रहिंदे ने, पर जैसे जैसे मनुख दे छिद्र वधदे गए, जख्म वधदे गए, पट्टियां भी वधदियां गईयां, और जब सारा ही शरीर जख्मी हो गया तो सारा शरीर पट्टियां नाल भर गया। कपड़े नहीं पहने हुए, जख्मां दे उत्ते पट्टियां बनी हुई ने, हकीकत यह है। हमा तन दागदार शुदम पुंबा कुजा कुजा ने हम, ये सूफी संत कहिंदा है रोम रोम जख्मी है, किथे किथे मैं पुंबा रखा ते पट्टी बन्ना, ते जे मैं पट्टियां इतनियां बना रोम रोम दे उत्ते ते पट्टियां ते मेरा लिबास बन जाणगियां, पट्टियां मेरा पहरावा बन जाणगियां। गुनाह नूं ढकण लई जो कपड़े पहने वो कपड़े लिबास बन गए, वो कपड़े फैशन बन गए, वो कपड़े समाज दा अंग बन गए। वरना गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए एहसास पशुआं च नहीं पैदा होया, विस्माद नांगे फिरे जंत। महाराज कहंदे ने मैं ते विस्माद हो जाना, पशु नंगे ही घूम रहे ने, इन्हां दी नग्नता लोभ दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नग्नता हंकार दी प्रदर्शनी नहीं करदी, इन्हां दी नग्नता वासना दी प्रदर्शनी नहीं करदी। मनुखता दे आदकाल दे
मनुख जद निर्दोष सी इतना ही निर्दोष जैसे कि पशु ते पक्षी ने, कपड़िया दी लोड़ नहीं सी। दोष वद्दे गए, कपड़े वद्दे गए, सहजे सहजे समाज दा हिस्सा बन गए कपड़े। जो कपड़े पहन रहे है भले मानस है, निर्दोष है, हुन नंगा दोषी कहलाण लग पे। इस वास्ते दोषी मनुख नूं असीं कह देने आ बड़ा नंगा मनुख है, ये ते बड़ा नंगा है। कमाल दी गल, एक दौर ऐसा लंघिया, ये ते बहुत गुनाहगार है, सब कुछ ढक के रखे है, ढके होया है। परिभाषा बदल गई, ये ते बहुत नंगा है, ये ते बहुत नंगा है। वक्त दा तकाजा, समय दा प्रभाव। तो ये शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मर्दाने दे प्रति उच्चारण किया है। कल कल वाली काम मद मनुवा पेवन हार। एक कल आम पर चलता है शराबो कबाब, कबाब नाल शराब जुड़ गई, शराब नाल कबाब जुड़ गया। ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंज नहीं कहंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कहंदे, शराब और कबाब। लग जाए कुछ जरूर चोली दामन दा साथ है। अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकदे शराब और दुध, शराब और दही, शराब और घी ऐसा नहीं कहंदे, जबकि सारियां चीजां खाण वालियां। शराब और कबाब, कबाब नो शराब चाहिदी है, शराबी नो कबाब चाहिदा है। इना दोहां दा चोली दामन दा साथ है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज ऐसे रैवरी पुरुष ने शराब दी गल कर रहे ने, कबाब दी गल कर रहे ने। खाना है कबाब जरूर खा, पर जिस तरह दा ढंग मैं तेनू बनाने दा दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी, पर जेडी मैं बनाने दा ढंग तेनू दसदा ओ पी। बन शराबी, बन कबाबी। ऐसा शराबी, ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तेनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नू मैखाना कहा जांदा, अज ते खेड़ी कुछ होर होगी, सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है। अगर ए कलाल है तो इसदे कुल शराब केड़ी है? कल कल वाली काम मद, इसदे कुल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज, हे प्रभु तू जगत दा स्वामी, असी इस युग दे कामी, तो तालमेल किस तरह बैठे? एक दौर ऐसा भी लंघिया, हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी, धर्म दी नुमाइश सी। बारों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी, गल दे च माल है, हत्थां च माल है, घर दे च मालां लटकियां हुई ने, ग्रंथ पए ने, तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने। और घर दे च भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है, धर्मशाल है। दौर बदलिया, घर दे च बार बन गई, घर विच बोतलां आ गईयां, घर विच वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल, पहले घर मंदर सन, घरम धर्मशाल सन, हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ने, भ्रष्टाचार दे अड्डे ने, दुराचार दे अड्डे ने,
दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ए बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां दे, इश्तहारां दे, तरह तरह दे मैगजीन, तरह तरह दे गंदे नावल, जिन सियात नाल भरियां हुई कहानियां, हर पासों उजागर काम दी प्रदर्शनी, काम दी नुमाइश। आखिर मनुख कोल जो कुछ होवेगा उसे दी प्रदर्शनी करेगा, आखिर मनुख कोल जो कुछ है वही बार प्रगट करेगा। काम ही काम जीवन दी एक वक्ती लोड़ हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता। लोड़ कतई जीवन नहीं होंदी। इसनों जिस आलमाना ढंग नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान कीता है आप दे सामने रखा। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज पंक कहंदे ने चिक्कड़ नूं, पंकज पंक दे चो जमया, चिक्कड़ दे चो पैदा होया पंकज। पंक ने जन्म दिता है, चिक्कड़ ने जन्म दिता है पंकज। तो चिक्कड़ किसनों जन्म देंदा है? चिक्कड़ एक चोटी दे फुल नू जन्म देंदा है, जिसनों कमल कहंदे ने, जिसनों सौरभ कहंदे ने, जिसनों कंज कहंदे ने, जिनू पदम कहंदे ने, जिनू सारंग कहंदे ने, जिसनों बारिज कहंदे ने। धार्मिक ग्रंथां दे गालमन इसदे 18 नाम ने, और ये धर्म दा प्रतीक है। अगर कोई धार्मिक मनुख है तो कह दिता जांदा है ते कमल दी तरह। भारत दे मंदरां दे गुंबद कमल ने। बोध भिक्षु जद सवेरे सवेरे भिक्षा लई चलदे ने, हद च कमल दी पंखड़ी लेके, ताकि एहसास रहे विचर रहे हां बाजार दे गलियां दे, कमल दी तरह रहना है। डुबना भी नहीं, भिजना भी नहीं। महाराज कहने पंकज फाते पंक, जो पंक तो जमया सी, चिक्कड़ तो जमया सी, महाराज कहने चिक्कड़ी ची फस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंकज पंक दे फस के रह गया। कदी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है, ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने, रुक जांदे ने, पानी नीवा होण लग पैंदा है। और इतना नीवा कि चिक्कर दिखाई देण लग पैंदा है, और वो कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया, पानी दे आसरे थे, बहुत उच्चा उठिया सी, बहुत उच्चा उठिया सी, नीवा चला गया, थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई, चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया, और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है, इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है, ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया, कमल थल्ले चला गया। चिक्कड़ तो जमया, फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। ऐसा चिक्कड़ विच उलझे है, अपनी सुगंध ही भुल गया, अपना स्वप्न ही भुल गया। चिक्कड़ तो जमया सी, हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है, अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया। चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया,
चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया है, काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है। काम तो जमया ए जीव काम दे च ही फस के रह गया। चारों पासे अज नाटक फिल्मा मैगजीन इश्तियारी दुनिया अखबारी दुनिया टीवी दी दुनिया रेडियो दी दुनिया समाजिक दुनिया राजनैतिक दुनिया हता कि धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी कारण ये जड़ा युग है एक कलाल है ही दे कोल शराब यही शराब है। मनुखां नूं किसे होर सरूर दा पता ही नहीं किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने और काम प्रबल नशा जिस दे मनुख बेसुरत मनुख बेहोश। ये गल वखरी है कि इतना खुल के इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया लिखया नहीं गया और जद किसी ने कुछ लिखया है तो उस ग्रंथ नु धर्म ग्रंथ नहीं आखिया गया। जद कोई बोलिया है तो उन्हां बोलां नु धार्मिक बोल नहीं आखिया गया। हद हो गई जिस तो जीवन जमया है उस मन दे बोल इनु एक पासे रख दईए धर्म दा हिस्सा ना मानिए तो फिर ए ते इंज होई जिवें कह दईए जन्म ही नहीं होया या जिथों जन्म होया असी इसनु मनदे ही नहीं। जीवन उदों सफल हो जांदा है कि जम्मे काम दे चां ते लीन होवे राम दे च यात्रा सफल हो जांदी है। चिक्कड़ तो जमे है पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे। काम तो जमे है पर ए काम ते पदार्थां दोहां तो उच्चा उठे। पानी तो भी उच्चा उठे कई दफा जोर नाल वधिया होया पानी भी डुबो के रख देंदा है उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है अचानक सता मिल गई है प्रभुता मिल गई है बड़ी तेजी दे नाल धन संपदा आई है नहीं संभाल सकया गर्क हो गया डुब गया। आहिस्ता आहिस्ता जद सरोवर दे च पानी पैंदा है आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठदा रहिंदा है पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति देच अपने आप नूं तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे बड़े तीबरता दे नाल पानी वधदा जा रहा है उच्चा हो रहा है और इसी तीबरता दे नाल ओ अपने आप नूं उच्चा कर सके कठिन हो जांदा है औखा हो जांदा है। काम ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है वेच रहा है पी रहा है पिला रहा है। कल कलवाली काम मद मनुआ पीमणु हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। ए समा ए युग ते कलाल है काम दियां बोतलां काम दी शराब सजा के बैठा है पर किस प्याले विच पीती जांदी है और साकी कौन है पिलाण वाला कौन है। कहिंदे कलाल होवे शराब होवे प्याला नहीं साकी नहीं तो मैखाने दा रंग नहीं जमदा। इस कलाल दा जो मैखाना है रंग जमे आया है। काम मद कल कल वाली काम मद मनुआ पीवण हार क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। प्याला है
क्रोध दा, साकी है अहंकार, और शराबी शराब दे पीण वाला है मनुख दा ए मन। तन भावें सारिया दे पानी पीण वाले हवन, मन ते सारिया दे शराब पीण वाले। तन भावें दुध पीण वाले हवन, मन ते सारिया दे शराबी ने। ए गल वखरी है, दिस पैंदा है ए मुंह नाल दुध पी रहे है, मन नाल शराब पी रहे है। मुंह नाल भोजन छक रहे है, पर मन नाल ते शराब ही पी रहे है। शराब ही काम दी शराब, शराब दा काम की है बेहोश करना। काम वासना एक ऐसी बेहोशी है जिस विच मनुख नू अपना नाम धाम कुछ भी चेते नहीं रहिंदा। कहिंदे जन्म दा कारण भी बेहोशी है, मरण दा साधन भी बेहोशी है। बेहोशी च जमदा है, बेहोशी च मरदा है। बेहोशी दे च मरण दी क्रिया चल रही है, और बेहोशी दे च ही जन्म दी क्रिया चल रही है। बेहोशी हावी है, जब काम दे च होश हो गया है तो फिर मरण दे च भी होश होवेगा, और जिसका मरण दे च होश हो गया है, ना फिर जन्म ना फिर मरण, फिर तो अगम्मी दुनिया दा वासी हो जांदा है। बहुत वड्डे अपराध करने अवन तो कई दफा मनुख अपने आप नू थोड़ा बेहोश करदा है, शराब पींदा है। ते जे काम दी शराब दा नशा मनुख दे मन नू हर वक्त चढ़िया होवे तो इस दीआं अखां ते हर वक्त मैलियां रहणगीआं, इस दा तन ते हर वक्त मैला रहेगा। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, क्रोध कटोरी, क्रोध दा एक कटोरा है, प्याला है, मोह भरी, मुंह दे च क्रोध भरे है, मुंह कटोरा बनया होया है। एदे च की है, काम दी शराब और क्रोध कटोरा बनया है, क्योंकि क्रोध ते मुंह दे राही ज्यादा प्रगट आउंदा है। भावें क्रोध अखां च भी प्रगट आउंदा है, भावें क्रोध हत्थां च भी प्रगट आउंदा है, भावें क्रोध चेहरे ते भी प्रगट आउंदा है, पर क्रोध दी अस्थूल क्रिया बहुती जबान तो प्रगट आउंदी है। और जब जबान चो क्रोध निकलन लग पवे तो जबान सख्त आउंदी है। कहिंदे ने जबान दी सख्ती परमात्मा नू पसंद नहीं। खुदा को न मंजूर थी सख्ती जुबान में, इसीलिए ना हड्डी रखी जुबान में। जबान दे च उसने हड्डी नहीं रखी, सख्ती नहीं चाहिए जबान दे। और जो जबान दे सख्ती ले आया है, समझ लो जबान दे च हड्डी आ गई है, इदे हलक दे च हड्डी आ गई है, इसकी जबान सख्त हो गई है। घरेलू बहुते कलेश जबान दी सख्ती तो पैदा होते हैं। बहुत सारे संघर्ष ते लड़ाइयां दा कारण मनुख दियां अखां नहीं ने, मनुख दे कन नहीं ने, मनुख दी नासका नहीं है, मनुख दे हाथ पैर भी नहीं, मनुख दी जबान है। अगर कल कलेश दा मूल केंद्र लभांगे किस कारण करके होया है, तो जबान ही मिलेगी। क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार, पिलावा कौन है, साकी कौन है, अहंकार पेश करने वाला अहंकार, मैं हां। जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना क्रोधी होवेगा, जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना ही कामी होवेगा। ताई ये दोवां दा कट्ठा जिक्र कीता मेरे पातशाह दी बाणी ने, काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सोहागा डाले। जिवें सोने नूं सुहागा ढाल के रख देंदा है, काम ते क्रोध मनुख दी काया नूं गाल के रख देंदा है। काया दे बहुत सारे क्रोध, काया दे बहुत सारे रोगां दा मूल कारण असीम क्रोध असीम काम।

अथवा अहंकार मजलिस भी चाही दिए, शराब कली के में पीए, कोई महफिल कोई साथी। यही कारण है शराबी साथी लब देने, साथ लब देने। तो मजलिस वास्तविक केड़ी है? महाराज कहते हैं मजलिस कूड़े लब दी, पी पी होए खुआर, झूठे लोभ दी महफिल। झूठ क्यों कह देता? लोभी झूठा ही होता है। झूठ क्यों कह देता? जीवन सीमा दिच है, लोभ असीम है। कितना जीवेगा? 100 साल, चलो 150 साल तक जी रहेगा। जीवन दी सीमा है, मनुख दे लोभ दी सीमा नहीं है। आज तक किसी भी पैमाने नाल मनुख दा लोभ नापिया नहीं गया। ये गल वखरी है, हिमालिया दी बुलंदी नाप ली गई है, प्रशांत महासागर दी गहराई नाप ली गई है, सूरज चंद तारियां दी बुलंदी नाप ली गई है। ये लोभ किथे खत्म होता है? सीमा अजे भी पकड़ च नहीं आई। किथे खत्म होगा? किथे गल मुकेगी? इति सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। कहिंदे ने एक राजे ने एक भिक्षु नो, बौद्ध भिक्षु नो बेनती की थी, बड़ा आनंद दिखाई देंदा है थोड़े कोल, बड़ा सरूर बड़ा रस, साड़ी झोली च भी पाओ। ये भिक्षु कहन लगा, अच्छा मैं कल जब थोड़े द्वार ते भिक्षा मंगण आवांगा तो कुछ भिक्षा मैं थोड़ी झोली च भी पा देंगा। तुसी पदार्थ मेरे पात्र दे च पाना, परमात्मा दी कुछ गल्ला मैं थोड़े पात्र दे च पाण दी कोशिश करांगा। और अक्सर संत ते संसारी पदार्थ ते परमात्मा दा वट्टा सट्टा करदे ही रहे ने। ओ पदार्थ झोली च पा देंदे रहे ने, ओ परमात्मा दी गल सुना देंदा रहे। आदकाल तो ऐसा चलदा रहे। राजा खुश होया और कहन लगा, ए भिक्षु फिर कल सब तो पहले साढ़े घर ही आना, इत्थे ही आना, असी भिक्षा लेके खड़े आवांगे। अक्सर बौद्ध भिक्षुआं नूं भिक्षा देण लई भिक्षा दाते बार खड़े होंदे ने और देंदे ने। जिथे जिथे बौद्ध धर्म है ये दृश्य बहुत देखण नूं मिलदे ने। राजा भिक्षा लेके पके हुए पकवान तरह तरह दे बार लेके खड़ा है। भिक्षु पात्र ले आया और आखिया, राजन पाओ। वो खीर पाई, राजे ने थल्ले डुल गई। भिक्षु ने कहा, होर पदार्थ पाओ। राजे ने सोचा शायद कोई करामाती गल होवे, पात्र आपे ठीक हो जाए। तो फिर हलवा पाया, पूड़ियां पाईयां, थल्ले डिग गईयां। होर पदार्थ पाओ। तरह तरह दे बने हुए होर पकवान उस पात्र दे च पाए, पकवान थल्ले बिखर दे गए, गिर दे गए। भिक्षु दा पात्र अगे है। राजा कहिंदा है, ए भिक्षु तुसी भिक्षा मंगण ते आ गए और राज द्वार ते आए, पर कम से कम अपना भिक्षा पात्र ते वेख लेंदे, ये ते टुटिया होया है, इहदा थल्ले पेंदा ही नहीं है। राजन फिर मैं यही गल तैनू आखा, तू रब दी गल मैथों सुनना चाहना है, परमात्मा दा ज्ञान मैथों लेना चाहना है, तैनू अपना छलनी मन नहीं दिखाई देंदा। तेरे दित्ते हुए पदार्थ मेरे पात्र तो डुल गए, मेरा दित्ता होया परमात्मा दा ज्ञान भी तेरे पात्र तो डुल जाएगा। पहले अपना पात्र ठीक कर, भिक्षा मिल जाएगी। पहले अपना मन ठीक कर, भगवान मिल जाएगा। मजलस कूड़े लब दी, पी पी होए खुआर,

0: ਤੋ ਇਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਈਰਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਸੰਗਤਰਾਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਵੀ। ਕਦੀ ਕਦਾ 10-20 ਕਵੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦ ਕਵਿਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਚਿੰਤਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਭੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਕੁਛ ਬਣਾਈਏ। ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਕੰਨਿਆ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਪਕਦੀ। ਪਿਓ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਤਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਇਸਤਰੀ ਜੀਵਦੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ। ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਜਦ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੋ ਉੱਚੀ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਐਨ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਵਰਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਰ ਕੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਤੁੜਾ ਬੈਠਣ, ਕਦ ਜੋ ਛੋਟਾ। ਇਸਤਰੀ ਜੈਸੇ, ਪੁਰਸ਼ ਜੈਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੁਰ ਜੈਸੀ ਚਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਖਰ। ਇੱਕ ਚੰਬੇਲੀ ਗੁਲਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਚੰਬੇਲੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਲਾਬ ਅਗਰ ਕਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਕਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਢੰਗ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ, ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਾੜਾ, ਔਰ ਦਾੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਛੁਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਵਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਤੂੰ ਛੁਰੇ ਲਿਆ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਤੂੰ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ
1: ਰਹਾਂ।
0: ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਇਸਤਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। तो फिर की करे हुण पुरुष फिर स्त्री वर्गा बने। फिर चला जांदा है नाई दी दुकान ते, कहिंदा है उस्तरे ते कैंचियां नाल मेरा मुखड़ा इंज बना दे जिवें परमात्मा ने स्त्री दा बनाया, नारी दा बनाया। बनाया प्रभु ने वख वख स्त्री वर्गा बना दे। अज तक कोई मोर नाई दी दुकान ते नहीं गया मेरे पंख कट दे ते मैनू मोरनी वर्गा बना दे। कोई शेर भी नहीं गया मेरे गर्दन दे वाल कट दे ते मैनू शेरनी जैसा बना दे। कोई मुर्गा भी नहीं गया मेरी कलगी कट दे मेरी गर्दन दे पंख कट दे ते मैनू मुर्गी जैसा बना दे। ये मूर्खता सिर्फ मनुख ही करता है, पशु नहीं करता, पशु नहीं करता, मनुख करता है। मनुख नूं ये श्रृंगार दिता है। मैं अर्ज करा जिस दिन वाकई वेखण वाली अख होवेगी दाड़े तो बिना चेहरा पुरुष का नहीं चंगा लगेगा, नहीं चंगा लगेगा। हुण मैं हैरान हाँ दाड़े वाला चेहरा स्त्री का भी नहीं चंगा लगेगा। क्या पसंद करोगे स्त्री नूं दाढ़ी आवे मुछां आवन? ते मैरज करना जिन्हों नहीं आउंदियां पुरुष जे नहीं आउंदियां दाढ़ी ते मुछ उन्हों खोदा कहिंदे ने, इह ते खोदा। और मैं हैरान होया कि रागी सिंह सी बड़ा सुंदर कीर्तन करदा सी पर खोदा, दाड़ा नहीं सी, कानपुर दा सी वासी, मुछां नहीं सन। 50-60 साल का हो चलिया सी, हर शहर दे वैद हकीम नूं कहिंदा सी कोई दवाई है ऐ दाड़ा आ जाए मुछां आ जाए। कीर्तन करदे आ गुरु दे दर ते चंगा नहीं लगदा मैं, ऐ शिंगार मेरे कोल नहीं। जगह जगह दवाई पुछदा सी। एक दिन किधरे मेरे कोल पुछ बैठा, मस्कीन जी सुने है कोई बाबा बलवंत सिंह नाल तुसी रहे हो ते निर्मले लोग दवाइयां दे बड़े ज्ञानी आंदे ने, तुसी शायद उनां कोल कोई नुक्सा सिखिया होवे, कोई ऐसी दवाई दाड़ा आ जाए। मैं कहा हद हो गई, जिन्हां नूं दाड़ा नहीं आउंदा वो दवाई लभदे ने, जिन्हां नूं आ जांदा वो नाई लभदे ने। ऐ नहीं समझ आ, ऐ नहीं समझ आ। खोदा मनुख नहीं चंगा लगता। परमात्मा ना दिता होया शिंगार है। हजरत ईसा मोहम्मद साहब तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष ऐ शिंगार है उन्हां को। स्त्री का एक श्रृंगार है और पुरुष नालों इस मामले च बहुत अगे। जीव दे जाग दे मनुख नूं जन्म देना यह मनुखता दे जन्मदाती है, मां है। बहुत वड्डी सौगात। इस वास्ते ऐलानिया गुरु नानक ने कह दिता सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। अपनी महानता दा बोध ना होण कारण करके इस युग दे च स्त्री पुरुष दी नकल ते चल पई है। पुरुष वर्गे कपड़े पहनण लग पई, पुरुष जैसी चाल चलन लग पई, पुरुष जैसा कद बनाना है। तो आप सुन के हैरान होवोगे 20% स्त्रियां अमेरिका विच शेव करांदियां ने, उन्हें दाढ़ी आ जाती है, नकल जो पुरुष दी करनी है। इत्थे भी मैं देखिया, सिख जगत विच भी देखिया, जिहड़ियां बीबियां पुरुषां दी तरह कपड़े पहनदियां ने उन्हां नूं दाढ़ी आ जाती है, दाड़ा आ जाता है। कपड़े जो मर्दां वाले पहने पुरुषां वाले पहने, सजाया जो अपने मर्द की तरह मर्द जैसा होना है। प्रभु ने तेनों स्त्री जैसा बनाया कि जब तन का चोला तेरा अलग है तो शरीर के वस्त्र भी अलग होते हैं, पुरुष जैसे नहीं होते। जब तेरा तन अलग बनाया तो तेरे तन के कपड़े भी अलग होने चाहिए ने, पुरुष का तन अलग बनाया वे कपड़े अलग होने चाहिए। दोहां दे वस्त्र एक नहीं हो सकते क्योंकि दोहां दे तन एक नहीं है। बदकिस्मत ही है जद कोई स्त्री पुरुष की नकल ते चल पैंदी है, पुरुष जैसा होना है, तो तो कई दफा प्रकृति सहायक हो जाती है, ठीक है तेनों पुरुष जैसा बनाते हैं। इस वास्ते मैं अर्ज करा, अगर एक स्त्री सारी जिंदगी पुरुष की कशिश दे जीवी है, मर के नू अगला जन्म पुरुष का मिल जाएगा। अगर एक पुरुष आखिरी दमा तक स्त्री की कशिश दे जीवे है, मरण तो बाद अगला जन्म इस स्त्री का लाजमी मिलेगा। पुरुष हर जन्म दे पुरुष होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं, स्त्री हर जन्म दे स्त्री होवे ऐसा कोई लाजमी नहीं। थोड़ी जिहा मात्रा का भेद है दोहां दे शरीर च, एक स्त्री एक पुरुष, पर कशिश विपरीत दी। इस विपरीत दी कशिश दे चां बड़ी प्रबल वासना प्रधान है, जिन्हों कहिंदे ने काम वासना गुस्ताखी मां। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का फैसला, छले कनक कामने, मनुख छलिया जाता है कनक कामने। वो जो कामना चलती है, धन की कामना, प्रभता की कामना, माण वड्याई प्रतिष्ठा की कामना, पदार्थों की कामना, खाण पीण की कामना, फिर वक्ती तौर पर आके रुकती है स्त्री की कामना, कामने की कामना। तो स्त्री का नाम कामना पै जो है कामने ही पै गया, कामना दी मणि, और पुरुष का नाम पै गया कामराज। कितनी भी सर्कल दिच घूमती रवे स्त्री की वासना पुरुष से रुकती है, कितनी भी घूमती रवे वासना पुरुष की सर्कल दिच स्त्री से रुकती है। पुरुख में नार, नार में पुरुखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। महाराज कहिंदे कलयुग ऐसा है, बस कामना प्रधान होके जी रहे ने, वासना प्रधान होके जी रहे ने, भावना प्रधान नहीं। अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दे च ले आईए, ये मनुख बाजार दे च आया, फैक्ट्री दे च आया, ऑफिस दे च आया, मार्केट दे च आया, किसी धार्मिक मंदिर दे च नहीं आया, किसी गुरुद्वारे नहीं आया। अगर भावना करके आया है, भरोसे करके आया, प्रभु ते भावना हो सकता है, अगर भावना नाल बैठा है तो यदि दुकान भी मंदिर बन जाए। ये भी मैं अर्ज कर दे, वासना करके बैठा है तो गुरुद्वारा भी दुकान बन जाएगा, मार्केट बन जाएगा, बाजार बन जाएगा। बाजार दी हलचल, मार्केट दी बेईमानी और धंधे दी बेईमानी सारी धर्म रिच आ जाएगी, क्योंकि वासना मलिन हो जाएगा धर्म। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अगर धार्मिक कर्म में भावना वस ना होके कामना वस होके कर रहे हैं, तो कीर्तन भी धंधा, कथा भी धंधा, मत्था टेकना भी धंधा, अखंड पाठ रखाना भी धंधा, पूजा पाठ रखाना भी धंधा, पर मैं भावना करके कर रहे हैं और भावना नाल मैं बाजार विच बैठा, तो यकीन जानो दुकान भी हरि मंदिर बन जाएगा। खड्डी ते कपड़ा बुनद्या बुनद्या खपीर प्रभु नाल जुड़ जाता है। चेले रोकते ने हुण ते कपड़ा ना बनो, थानू लोकी ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, कहिंदे जद मैं कपड़ा बुनदा सी उदों तुसी मैनू कदी नहीं रोकिया, क्योंकि कपड़े बुनना सिर्फ मेरी रोजी सी, मेरा धंधा सी, ते हुण ते मेरा धंधा ही धर्म बन गया। मैं ते भावना करके बैठा, हुण तुसी कहिंदे हो ना करो, हुण ते मेरा धंधा भी धर्म बन गया। भावना अधीन कर्म धंधे नू धर्म बना देंदे ने, वासना अधीन कर्म धर्म नू भी धंधा बना देंदे ने। महाराज कहिंदे ने इतनी कामना प्रधान, धंधा ही धंधा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा, धंधा चल रहा है, परिवार चल रहा है, धन संपदा चल रही है, प्रभुता चल रही है, मनुख दे नाल प्रभु नहीं चल रहा। यह सारा खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च जिस तरह है, तुझ बुद्धि अनुसार थोड़ा जिहा मैं थोड़े सामने रखिया। भावना करके गुरुद्वारे आवना है, वासना करके कामना करके बाजार दे जाना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस दे जाना है, पर जे इत्थे भी कामना करके आ गए फिर गुरुद्वारे नहीं आए, ते असी ते बकायदा अरदास करदे हैं फलाने की यह मनोकामना, फलाने की यह मनोकामना, ते हुण सुन लो, काहूं फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संगराज। इत्थे ते सारिया कामनावां नूं परे सुट गया। किथे सुट के आईए? कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे को। जिथे जोड़े ला के आया ना कामनावां उत्थे ला के थे। फिर प्रभु तेरी झोली आत्मक रस नाल भर देगा, आनंद नाल भर देगा। गुरु तेरी झोली दे रब्बी गुण पा देगा। इस तरह दे जीवन दा ढंग सानू आ जाए तो मेहरज करा परिवार विच बैठे भी असी निरंकार विच बैठे होवांगे, दृष्टि बदल जाएगी। मात पिता सुत बंधव भाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। हे पार ब्रह्म, तू मेरा मददगार बनया। किधरे पुत्र बन गए, किधरे पिता बन गए, किधरे दादा बन गए, किधरे भरा बन के, किधरे भैन बन के। तू मेरा सहयोगी बनया। किधरे पति बन गए, किधरे पत्नी बन गए। परिवार निरंकार का रूप हो जाएगा, दृष्टि बदल गए। एक ढंग है कि परिवार भी हरि मंदिर बन जाता है, निरंकार का रूप है। एक ढंग है कि गुरुद्वारा भी संसार बन जाता है, मंदिर भी संसार बन जाता है। जितनी मैनू थोड़ी बहुत समझ सी ते जितना मैं खोल सकदा सी, जिहड़े जिहड़े लफ़्ज़ सतगुरु ने मैनू दिते मैं थोड़े सामने रखे ने। धन गुरु हर राय साहब जी महाराज, थोड़ी भावना उजागर करे कीर्तन दे राही, कथा दे राही, इस पाठ दे राही। क्योंकि भावना उजागर हो जाती है तो जीवन च भगवान प्रगट हो जाता है, परमात्मा प्रगट हो जाता है। इस तरह की अवस्था साड़ी बने। सारियां दा बार बार धन्यवाद। बोल चुक दी शमा। वाहिगुरु,
2: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
3: सैभं गुरुप्रसाद बेसमार अथा अगन अतोले ज्यों

ਛੋੜੋ। ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਝੁਕਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਇਬਾਦਤ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਈਏ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਈਸਾਈਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ, ਸੁਰਸਤੀ ਦੇਵੀ, ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਅਨੰਤ ਦੇਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਇਬਾਦਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਤਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਤਸਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਸਰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜਿਵਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਔਰ ਨਿਹਕਲੰਕ ਰਾਜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਈਅਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਰਜਾ ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਮਗਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿਸ਼। ਤੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਤਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
संबंध जोड़िया उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल मित्रता दा। तू भाई साडा मित्र है, तू साडा दोस्त है। वख-वख रिश्तियां दे ते समुचे संसार दे च वख-वख मजहब ते संप्रदावां मौजूद ने। जैसे कि मैं अर्ज कर चुके हां कि इस्लाम ते ईसाईयत दा रिश्ता प्यो पुत्र दे रिश्ते ते खड़ा है। सनातन मत दे एक धड़े दा परमात्मा नाल रिश्ता मां ते पुत्र दा रिश्ता है। सूफियां दा रिश्ता महबूब ते महबूबा दा रिश्ता है। और भगतां दा जो बहुत तादाद दे साडे देश दे च पैदा होए दास ते मालिक दा रिश्ता है। तू मालिक है, असी तेरे गुलाम हां, असी तेरे दास हां। इन्हां दे चों मीरां भी है जो थां थां ते अपने आप नूं दासी कहिंदी है, गुलाम कहिंदी है। तू मालिक है, माने चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। ए गीत मीरां दा बड़ा प्रचलित है, हे प्रभु मैनू चाकर रख ले, गुलाम रख ले, दास रख ले। तू मालिक है, मालिक है, मैं तेरी चाकर हूं। गरज के समुचा भक्ति जीवन दास ते मालिक दे रिश्ते दे आले दुआले घूमदा। कुछ ऐसे भी ने जो कहने तू साडा मित्र है। चीन दा प्रसिद्ध संत लाओत्से वो कहिंदा, हे ईश्वर जिस धातु तो तू बनया है उसे धातु तो मेरा जन्म है। फर्क सिर्फ ए है तू पहले है, अनादि है, मैं बाद दे चा। इको ही धातु, इको ही अंश होण करके तू मेरा वड्डा भरा है, मैं छोटा। तो भ्राता दे रिश्ते दे आले दुआले लाओत्से दी बंदगी घूमदी है, लाओत्से दी इबादत घूमदी है। वख वख संसार दे भगतां ने संतां ने रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे नाल वख वख स्थापन कीते ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी दा अध्ययन करिए ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज तो पुछिए कि ओ अकाल पुरख थोड़ा की लगदा है, परमात्मा दे नाल तुसी केड़ा रिश्ता स्थापन कीता है। तो बाणी पढ़न तो पता चलता है एक रिश्ता गुरु नानक ने नहीं मनिया, बल्कि सारे ही रिश्ते परिपूर्ण परमात्मा दे च निरूपण कर दिते ने। उन्हां दा फरमान है, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबनी थाई तांबो के आ काड़ा जी। विज्ञानिक तत्व भी साडे सामने, अगर किसी बच्चे दी मां होवे ते प्यो ना होवे ओ एहसासे कमतरी दा शिकार हो जांदा है और उसनू जगत यतीम कहण लग पैंदा, प्यो ही कोई नहीं, मां है। ते जे हुण प्यो होवे ते मां ना होवे ऐसा बच्चा ममता ते प्यार तो वांझा रह जांदा है। जीवन दी परवरिश दे च काफी खामियां रह जांदियां ने। और इस गल नूं हुण मनोविज्ञानियां ने मन लिया कि जिस बच्चे नूं मां दी ममता नहीं मिली वड्डा होके ये कठोर होवेगा, ये सख्त दिल दा होवेगा। ये गल वखरी है कि उसके पुरबले संस्कार कुछ पवित्र होवन ते उहदे अंदर कोमलता बनी रहे, ये गल वखरी है। वरना मां दी ममता अगर नहीं मिली, प्यार अगर नहीं मिलिया तो बच्चे दा हिरदा कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। मां दी लोड़ है, पिता दी लोड़ है। हुण मां होवे, बाप होवे, पर भरा ना होवे बड़ी घाट महसूस होंदी है। भरा नूं ते आखदे ने इते बावां है, इते साडियां बावां ने। हुण मां बाप ते होवे पर भरा ना होवे ता बहुत वड्डी घाट महसूस होंदी है, बहुत वड्डी घाट। भरा होवे, मां बाप भी होवन पर दोस्त ना होवे, मित्र ना होवे जिन्हों बंदा राज दी गल दस सके। क्योंकि कुछ ऐसे भी राज होंदे ने व्यक्तिगत जो बंदा मां नूं नहीं दस सकदा, प्यो नूं नहीं दस सकदा, भरा नूं भी नहीं कह सकदा, वह सिर्फ मित्र नूं ही कह सकदा है, दोस्त नूं कह सकदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस परिपूर्ण परमात्मा नूं दोस्त भी कहिंदे ने। क्योंकि जिहड़ी गल मेरे अंदर गुझी है ये अकाल पुरख मैं तेरे अगों प्रगट करनी है, इस ढंग नाल जैसे कि एक मित्र मित्र दे अगों करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च मित्रता दा रिश्ता भी मौजूद है।
साहिब कहंदे ने सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंती यार तिस मोहन लाल प्यारे के हों फिरों खोजंती। साहिब उस परम शक्ति नु यार कहंदे ने तू सखा है साडा तू मित्र है साडा तू यार है साडा असी तैथों कोई गल छुपा के नहीं रखनी और छुपा के रख भी नहीं सकते तेरे अगों सब कुछ प्रगट कर देना है पर तू निरा यार नहीं तू ते भ्राता भी है जैसे रण में सखा बरात तू साड़ी बावा है निरी तू साड़ियां बावा ही नहीं रक्षा करने वास्ते बल्कि तू पिता है ते पिता दी सोचनी यही आउंदी है बच्चा अजीम बने तू सानू महान बनाने दी भी सोचदा है तू निरा पिता नहीं तू मां भी है ममता तैथों डुल डुल के पैंदी है तेरा प्यार समग्र जीवन दे उत्ते बरसदा है तू सारियां नाल प्यार पांदा है। अगाऊं चलिए साहिब गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी महबूब ते महबूबा दे रिश्ते नूं भी झुटलांदी नहीं नजरअंदाज नहीं करदी। गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा संबंध भी परमात्मा दे नाल जोड़िया है। वडहंस राग दा एक शब्द मैं आप जी दे समक्ष भेट करा। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावण आया तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया तेरे दर्शन विटों खनिए मन्या तेरे नाम विटों कुर्बानो जा तू ता मैं मान किया है तुद बिन कहा मेरा मानो चूड़ा भन पलंग से मुंदे सनबाई सनबाहा एते वेश करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा ना मनियार ना चूड़िया ना से वंगणिया जो शह कंठ न लगिया जलन से बाहड़िया। इस शब्द जिस रिश्ते का जिक्र है उते उही संबंध मेरे पातशाह स्थापन कर रहे ने जो सूफिया ने ईश्वर दे नाल स्थापन किया। दरअसल मां बाप होवन भरा भी होवे दोस्त भी होवन पति ना होवे पत्नी ना होवे तो एक बहुत वड्डी घाट परिवार विच महसूस होंदी है। ये रिश्ता भी परिपूर्ण परमात्मा दे नाल सतगुरु देव जी महाराज ने जोड़े। फिर गुरबाणी उस परम शक्ति नूं गुरु भी कहंदी है। गुरु गुरु गुरु कर मन मोर गुरु बिना मैं ना ही होर तू गुरु है आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा तू साडा गुरु है असी तैथों प्रेरणा लैण वाले तू समग्र जीवन नूं ज्ञान दान देण वाला है सारे जगत नूं चानना देण वाला है। जिथे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस दे नाल गुरु ते शिष्य दा रिश्ता जोड़दे ने उत्थे गुरबाणी उसनू राजा भी कहंदी है। को हर समान नहीं राजा ई भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे समान कोई होर राजा नहीं है तेरे समान कोई होर पिता नहीं है तेरे समान कोई होर मां नहीं है तेरे समान कोई होर मित्र दोस्त नहीं हो सकता तेरे समान कोई होर महान मालिक नहीं हो सकता। सारी जगत दे रिश्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने परमात्मा दे च निरूपण कीते ने। भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि जिन्ने साडे संबंध ने इन्हां संबंधां दे विचों ही परमात्मा की झलक वेखनी है। मां दे अंदर दुल रही ममता नूं परमात्मा की दित्ती हुई ममता समझना है पिता का दिता हुआ प्यार ऐसा समझना है कि परमात्मा ही यह प्यार दे रहा है ईश्वर ही यह प्यार दे रहा है। मां नूं ठुकरा के पिता का दिल तोड़ के अगर कोई बंदा तीर्थां ते भ्रमण करे दान करे पुन करे भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस नूं कोई महानता नहीं दिती। आप कहंदे ने मां प्यो पर हर सुने वेद भेद न जाने कथा कहानी मां प्यो पर हर करे तीरथ 68 तीरथ घूमण वाणी। मां दा दिल तोड़ के प्यो दी बेदबी करके अगर कोई बंदा कथा सुनने वास्ते जाए भाई साहब कहंदे ने कथा दे भेद नूं नहीं समझ सकेगा ये ते भुल गया ये जो मां तेनू मिली है ये मां नहीं ये परमात्मा ही मां दे रूप च तेनू मिले है परमात्मा ही ममता लुटा रहा है परमात्मा ही प्यार दे रहा है। अगर परमात्मा ने प्यार देना है ममता करनी है तो किस रूप च करे वह मां दे रूप च कर रहा है।
परमात्मा ने हमदर्दी जतानी है तो किस रूप दे जतावे? वो पिता दे रूप जता रहे, वो पिता दे रूप प्यार दे रहे। इस वास्ते भाई साहब कह रहे ने कि पिता दा दिल तोड़ के जो तीर्थां ते भ्रमण पिया करदा है, मां नूं ठोकर मार के जो कथा सुनन दी कोशिश पिया करदा है, भाई साहब कहिंदे रब्बी राज नूं ओ नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घूमण वाणी। ते हुण ऐसा होवे कि माता दे तन दे कपड़े ना आउण, पिता दे पैरां दी जुत्ती ना आवे, ते ए बहुत वड्डा दानी बणिया फिरे। भाई साहब कहिंदे ने मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। मां नूं ठुकरा के, प्यो दियां जरूरतां नूं ठुकरा के जिहड़ा बहुत वड्डा दानी बनन दी कोशिश कर रहा है, भाई साहब कहिंदे ने परले दर्जे दा अज्ञानी पुरुष है और बेईमान बंदा है। कारण की कि इन्हां तमाम रिश्तियां दे चों ही ते परमात्मा दा रिश्ता लभना सी, ईश्वर दा रिश्ता लभना सी। इस वास्ते साडे देश विच कोशिश कीती गई कि पहले घर नूं मंदिर बनाया जाए, घर मंदिर, घर घर अंदर धर्मशाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ। घर नूं ही मंदिर बनाना है। तो घर मंदिर तां बन सकदा है कि मां विच परमात्मा दी झलक मिले, पिता विच परमात्मा दा स्वरूप दिखाई देवे, भरावां विच अकाल पुरख दी हमदर्दी दिखाई देवे, मित्रां विच परमात्मा दी नेड़ दिखाई देवे और पत्नी विच परमात्मा दी पत ते शफकत दिखाई देवे, तां ही घर मंदिर बन सकदा है। बड़ी कोशिश की थी साडे देश दे ऋषि मुनिया ने कि जिहड़ी पत्नी है ए पति नूं परमात्मा आखे, ते जो पति है ए पत्नी नूं देवी आखे। हुण इक नूं देवी दिखाई देवे ते इक नूं परमात्मा दिखाई देवे, घर ते मंदिर ही बन गया। आखिर मंदिर विच की हुंदा है? देवते हुंदे ने, देवियां हुंदियां ने। पति नूं पत्नी देवी दिखाई देवे और पत्नी नूं पति देवता दिखाई देवे, एक परमात्मा करके बुलावे, एक देवी करके बुलावे, घर मंदिर बन गया। पर जे इस तो उल्ट गल होवे, पति पत्नी नूं भूत दिखाई देवे और पत्नी पति नूं डायन दिखाई देवे, घर ते नरक बन गया। होर किहड़े नरक दे जाना, घर ही दुखां दा अखाड़ा बन गया। घर नूं मंदिर बनाउण दी प्राचीन समय तो एक कोशिश सी, परमात्मा पहले घर विच दिखाई देवे तां ही बार दिखाई दे सकेगा। जिन्हों घर विच नहीं दिखाई दिता उन्हों बार किस तरह दिखाई देवेगा? तमाम रिश्तियां दे चों परमात्मा दी झलक वेखनी है, इस तरह दी कोशिश भारत दे ऋषि मुनिया ने की थी। और जोर दिता कुछ रस्ते दे चों भी मनुख लंघदा जा रहा होवे तां राम राम बुला देना, सत श्री अकाल बुला देना, अजनबी नूं भी हरे कृष्ण बुला देना। राम राम बुलाण दा मतलब की सी? एक दूजे दे अंदर राम नूं वेखना, एक दूजे दे अंदर सत नूं ते अकाल नूं वेखना। ते जद एक दूजे दे अंदर परमात्मा ही दिखाई दे रहा है ते झूठ किस दे अगों बोलना, धोखा किस नूं देना? बहुत गहरी सभ्यता साडे देश दे पनपी सी जो पश्चिमी सभ्यता ने किसी हद तक बर्बाद कर दिती। इस वास्ते हुण जे सवेरे दे वक्त दो मनुखां दा मिलाप हो जाए वह गुड मॉर्निंग कर छड़ देन, शाम नूं गुड इवनिंग कह देंदे ने, गुड नाइट कह देंदे ने, पर कौन पुछे? इस दे च कोई धार्मिकता नहीं है, इस दे च कोई रब्बी रस नहीं है, उस दे च कोई हकीकी आनंद नहीं है, इस दे च कोई परमात्मा दी झलक नहीं है। हे मनुख, तू उस परम शक्ति नूं अजनबी दे च भी देख, राही दे च भी देख, परिवार दे च भी देख, संसार दे च भी देख, तां ही तू उस परमात्मा नूं हर पहलू दे च देख सकेगा, हर पासों देख सकेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक कथन कि परमात्मा का एक रूप ने किधरे तेनू मां के रूप च मिले है, किधरे तेनू पिता के रूप च मिले है, किधरे तेनू भरावां के रूप च मिले है, किधरे तेनू मित्रां के रूप च मिले है, और रस्ते दे च कोई अजनबी जा रहा है, यह भी अजनबी नहीं, इहदे अंदर भी राम की झलक नूं वेखण की कोशिश कर, इहदे अंदर भी खुदा की झलक नूं वेखण की कोशिश कर। इस वास्ते इस्लाम के अंदर भी यह रिवाज प्रचलित सी, सलाम अलैकुम, सलाम है, सजदा है, नमस्कार है उस अल्लाह नूं, उस परमात्मा नूं। बहुत कीमती ये गल्लां सन, समय दी धारा ने खो दित्तियां ने, बर्बाद कर दित्तियां ने। इस वास्ते घर दा मंदिर बनना औखा हो गया, ते जे घर मंदिर नहीं बनिया तां संसार दा मंदिर दिखाई देना
ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਾ ਵਿਚ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਹੈਨ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਹੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੀਏ।

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने खट तुरसी मुख बोलना मारण नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर

ঘোড়ে পাখর সোয়নে সাখতে বুঝন তেরি বাট তর্কস তীর কমান সাঙ্গ তেগ বন্দ গুণ ধাত वाजा नेजा पतसों परगट करम तेरा मेरी जात बाबा और चढ़ना खुशी खुआर जित चढ़िए तन पीड़िए मन में चले विकार। एक ऐसा पावन पवित्र गुरु नानक देव जी महाराज का महावाक है जिस विच जीवन नू बुलंदियां ते किवें लै जाइए और जीवन दे विचकार रुकावटां केड़ियां केड़ियां ने इहदी पूर्ण तौर ते सूझ समझ वक्त दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज ने कराई है। इतनी गल ते स्पष्ट है प्रथम शरीर है फिर मन है फिर आत्मा है। सारे दा सारा पशु जगत शरीरक तल ते जी रहा है लोड़ां दे तल ते जी रहा है पर मनुख लोड़ां दे नाल नाल शरीर दे नाल नाल मानसिक तल ते जी रहा है ते मन दिया अपनिया कुछ कामनावां ने मन दिया अपनिया कुछ इच्छावां ने और इना कामनावां ने बहुत वड्डे पसारे नूं जन्म दिता है। इतना जीवन वड्डा ने जितना पसारा वड्डा हो जांदा है और इस नाल मानसिक तनाव वध जांदा है। इस वास्ते मनुख सिर्फ शरीरक तल ते ही रोगी नहीं मानसिक तल ते रोगी है। शरीरक तल ते ते शायद कोई कोई रोगी होवे पर मानसिक तल ते ते सतगुरु कहिंदे ने जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। तो प्रथम शरीर दे तल ते मनुख सावधान होवे सतगुरदेव जी महाराज खान पीण दा संजम दसते ने और साफ कहंदे ने बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खा दे तन पीड़िए मन में चले विकार। ओ खाना जो वक्ती तौर ते खुशी देवे ते बाद विच विकार पैदा करे ओ खाना जो वक्ती तौर ते रस देवे पर बाद विच बेरसी नूं पैदा कर देवे और शरीर नूं रोगी कर देवे सतगुरु उस तों जो है वरजदे ने। इह गल वखरी है कि शरीर अलग अलग ने कोई वायु प्रधान शरीर है कोई कफ प्रधान शरीर है और कोई पित्त प्रधान। अपने शरीरक सुभाव नूं वेख के खाणियां प्रति जो सुचेत हो जांदा है उह शरीरक पीड़ा तो बच जांदा है मानसिक विकार तो बच जांदा है और जैसे शरीर दे खाण पीण दा मसला हल होवे एकदम पहनण दी दुनिया आरंभ हो जांदी है। पर पहनना सिर्फ प्रदर्शनी वास्ते होवे पहनना सिर्फ नुमाइश होवे पहनना अपनी बिरती नूं भी बार मुखी करे ते दूजियां दी बिरती नूं भी अपनी तरफ खिंचे ऐसा पहनना भी मानसिक विकारां नूं जन्म देंदा है। तो सतगुरु उस तों भी सानूं वरजदे ने बाबा होर पहनण खुशी खुआर जित पै दे तन पीड़िए मन में चले विकार। अगां चल के मेरे पातशाह मन दी उस अवस्था दा जिक्र करदे ने जद तन तो मनुख निश्चिंत हो जाए ते मन बड़े पुरजोर ढंग नाल मंग करन लग पैंदा और एही एक ऐसा शब्द है जिस दे चार रहाव ने चार ठहराव ने ए अपनी तरह दा इंज कह लो एक महान शब्द है जिस दे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार रहाव ने। चार रहावां देच भाव चार भाव सतगुरां ने साडे सामने रखे ने प्रथम शरीर
और शरीर दे खान पीन दा मसला हल होवे तो फिर पहनना।

다른 걸 원칭지 말아 하이다. 혹은 레트 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए रहनी दो तरह की मानसिक ते शरीरक मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय ये मानसिक रहत है तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है मन करके सिख बने तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने ए सिख मैनू प्यारा ने क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख रहत नामे इस तरह के बोलने ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो जिमें कोई खोते नू इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे ज्यों काहूं पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही अगर इस तरह करके कोई खोते नू बाजार विच ले आवे लोकी उसनू वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते भई लै खोते नू इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लैके आ गया तैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगां फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नु इशनान कराया गया फुलां दी माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया बस खोते ही रख होता है सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर फरमान निशाने सिखी ई पंज हरफ का जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंच ककारा नाल कक्का के